0: पहजो शहर पहजो घर सकरंड आई सकरंड जो आवाज
1: GFM 90.8 जियो सिंधी जियो सिंधी
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: पहजो शहर पहजो घर सकरंड आई सकरंड जो आवाज
1: GFM 90.8

एसपीआर ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय दस्तावेज़ी फिल्म खे हक़ीक़तनि जे उबतड़ करार ॾेई छॾियो। एसपीआर पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त मुअरका हक़ खे हिकु साल गुज़रण बावजूद भारत हक़ीक़त खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ीक़तनि जे उबतड़ ड्रामाई ऐं प्रोपोगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ खे बिगाड़े पेश करे रहियो आहे। पहलगाम वाक़िए जा जवाबदार 28 जुलाई ते मारिजी विया त भारत 7 मई ते कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज़ में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कूड़ ते ॿधल आहे। भारत मुअरका हक़ में नाकामी खे तस्लीम करण बदिरां तारीख़ खे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई। मुअरका हक़ दौरान पाक फ़ौज भारतीय जारियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारत जहाज़ किराया ऐं ऑपरेशन बनियान अल मसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तस्बियात खे कामयाबीअ सां निशानो बणाए तबाह कयो।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान मथा हमलन की धमकी दई छी पासदार इनकलाब से सरी रीत राबतन की भी तस्दीक फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू डींदे डोनाल्ड ट्रंप है तो जैसे आपने हरमस खोलण की कोशिश में ओमान रुकावट बणो तो अमेरिका उन सख्त बमबारी कद अमेरिका वट अ हथियार जहा वसी जखीरा मौजूद हैं अमेरिका इन वक्त ताई जेतरा हथियार इस्तेमाल कया हैं उहे मौजूद हथियार की मजमू जखीरे की भेट में तमाम घट हैं हाने ईरान के हथियार फिटा करण अछो झंडो ऊंचो करण घुर्जे ईरान सा जारी तकरार खत्म करण लाए का तकड़ ना है मुझे इंतजामिया ईरान के पासदार इनकलाब से सीधे राबते लाए एक बैक चैनल भी कायम किया है।

आजम इंटेलिजेंस चीफ जे ऑफिस ते हमले के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार ॾेई छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राघची चयो आहे त वज़ीर आज़म मसरूर जे ऑफिस ते हमले जो को बि जवाज़ नाहे, न ई हमिलो ईरान जी सरज़मीन तां थियण जा सबूत आहिनि। दुश्मन विढ़ाइण चाहे थो, कुर्द दोस्तनि खे ख़बरदार रहणु घुर्जे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वसीले पाड़ेसरनि में नफ़रत जो ॿिज छटण जी कोशिश थी रही आहे। ईरान कुर्द जे साथियुनि खे सद्दाम ऐं दाइश खां महफ़ूज़ रखियो ऐं कुर्द असांजे सरहदनि ते सिक्योरिटी ॾेई रहिया आहिनि। असां संदन शुक्रगुज़ार आहियूं।

युते सही थियण खां पोइ ईरान जे सतगीर क़यादत गुज़िरियल ॿिनि महीननि दौरान वॾी जंग जी तयारीअ ते ध्यानु ॾिनो। हिन सिलसिले में पासदारनि इनकलाब खे मुल्क जी फ़ौज ते वधीक कंट्रोल ॾिनो वियो, जॾहिं त अहम उहिदनि ते इराक जंग जो तजुर्बो रखंदड़ ऐं माज़ी जे अंदरूनी क्रेकडाउन्स में शामिल फ़ौजी आफ़िसरनि खे मुक़ररु कयो वियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जे दावा अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान में अंदरूनी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स खे बि वधायो वियो। मिज़ाइलनि ऐं ड्रोन जी पैदावार में तेज़ी आंदी वई, उन सां गॾु ईरानी क़यादत अपने हरमुज़ ते पंहिंजी गिरफ़्त मज़बूत करण लाइ सामूंडी जहाज़नि ख़िलाफ़ कारवायूं कयूं ऐं जंग जो दायरो गाढ़े समुंड ताईं वधायो।

जेको वणियो करे वठो, लिखी थो ॾियां त सिंध में को सूबो न ठहंदो। सिंध में रुगो हिकु मकानी तरमीम थी हुई त अवाम बिटो निज़ाम करार ॾेई सॼी सिंध उथलाए छॾी हुई। असांजा एम पी एस घरनि मां निकिरी न पए सघिया। इहा तरमीम असांखे वापसि वठणी ऐं तसवुरु कयो त असां मां कंहिं सूबनि जी हिमायत कई त अवाम कहिड़ो हशर कंदो। नवनि सूबनि जी ॻाल्हि जा ख़ौफ़नाक नतीजा निकिरंदा। सूबाई वज़ीर सैद गनी जो कोरंगी में तकरीफ़ ख़िताब। सैद गनी चयो त मोहसिन नकवी जा इस्तकाम पार्टी जे सिंध में कहिड़ी हैसियत आहे जो नवनि सूबनि जी ॻाल्हि पिया कनि। सिंध विरहाइण जी ॻाल्हि टे चार उहे माण्हू कनि था जेके काउंसलर बि नथा थी सघनि। हिक ॿिए खे गोलियूं ऐं कुर्सियूं हणण वारा नए सूबे जी ॻाल्हि कनि था। खेनि शर्म अचणु घुर्जे। जिन खे हिक ॿिए जी शकल पसंदि आहे उहे कंहिंजे चवण ते गॾिजी सूबनि जो मुतालबो कनि था। हुकूमत वटि नवनि सूबनि जे हवाले सां का बि तजवीज़ न आहे। अपोज़िशन सां ॻाल्हियुनि वारे वज़ीर आज़म जी आछ अॼु बि बरक़रार आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त बानी पीटीआई जे असांखे बि ॻणती आहे, इलाज में कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। बानी पीटीआई जूं संदसि घरवारीअ सां मुलाक़ातूं करायूं वेंदियूं आहिनि।

मोहसिन नकवी सही तो चवे तो सिस्टम ठीक ना है जैसे सिस्टम सही हुए हा तो मोहसिन नकवी वफाकी वजीर न हुए हा मखदूम जमील उलजमान जो हाला में मीडिया से गाल मखदूम जमील उलजमान चो तो सूबन की गाल पार्लियामेंट में थियन घुर्जे आइन में वाजे है तो सूबन जो फैसलो पार्लियामेंट कंदी मोहसिन नकवी के सूबन बाबत न गाल घुर्जे नवाज शरीफ के पीपीए में शिकायत की उम्मीद न हुई तो असा के भी उम्मीद न हुई तो नून लीग कश्मीर के चूंडन में ये कंदी सेनेट में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल पीटीआई बानी की सेहत से बहस करायो वयो पीटीआई मेंबर्स पारा पेंजे बानी की सेहत बाबत गणती जेल का बाहर इलाज सहूलतूं फराहम करण जो मुतालबो अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास चयो है बानी पीटीआई की सेहत बाबत सूरत हाल गणती जोगी है खेस जेल में ज़हनी अज़ियत दिनी पई वे वज़ीर आज़म के सियासी मामलों बाबत सलाहकार राणा सनाउल्लाह जवाब दींदे चयो तो जो शख्स अदालती कस्टडी में हुए उन इलाज की जिम्मेवार हुकूमत होंगी पीटीआई के मशाल यूसुफ जई पाक बानी सेहत इंसाफ कार्ड जरिए 43 मिलियन खानदान के सेहत जो सहूलतूं फराहम क्यों पर अज पान पैं इलाज जो मुतालबो कर पो हुकूमत महंगाई सटियल अवाम मथा पेट्रोल जो बम किराए छो पेट्रोल 5 रुपया 77 पैसा डीजल जो फी लीटर 6 रुपया 47 पैसा महंगो पेट्रोल जो नव अग 325 रुपयन मां वधी 331 रुपया फी पैसा थी वयो डीजल जो फी लीटर अग 390 रुपया 42 पैसा मुकरर नोटिफिकेशन जारी नवा अग सिर्फ एक दिन 18 अगस्त लागू हुंदा

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

एसपीआर ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय दस्तावेज़ी फिल्म खे हक़ीक़तनि जे उबतड़ करार ॾेई छॾियो आहे। एसपीआर पारां जारी कयल पधिराई में चयो वियो आहे त मुआरक हक़ खे हिकु साल गुज़रण बावजूद भारत हक़ीक़त खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ीक़तनि जे उबतड़ ड्रामाई ऐं प्रोपोगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ खे बिगाड़े पेश करे रहियो आहे। पहलगाम वाक़िए जा जवाबदार 28 जुलाई ते मारिजी विया त भारत 7 मई ते कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कूड ते ॿधल आहे। भारत मारकाए हक़ में नाकामी खे तस्लीम करण बदिरां तारीख़ पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई। मारकाए हक दौरान पाक फ़ौज भारतीय जारियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारत जहाज किराया ऐं ऑपरेशन बनियान अलमसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तस्बियात खे कामयाबीअ सां निशानो बणाए तबाह कयो।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उमान मथा हमलन की धमकी दई छी फासदार इनकलाब से सरी रीत राबतन की भी तस्दीक फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू डींदे डोनाल्ड ट्रंप है तो जैसे आपने हरमज खोलण की कोशिश में उमान रुकावट बणो तो अमेरिका उन सख्त बमबारी कह अमेरिका वट अना भी हथियार जहा वसी जखीरा मौजूद है अमेरिका इन वक्त ताई जेतरा हथियार इस्तेमाल कया उ मौजूद हथियार की मजमू जखीरे की भेट में तमाम घट है हाने ईरान के हथियार फिटा करण अछो झंडो ऊंचो करण घुर्जे ईरान से जारी तकरार खत्म करण लाय का तकड़ ना है मुझे इंतजामिया ईरान के पासदार इनकलाब से सीधी राबते लाय एक बैक चैनल भी कायम किया है।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अक्सर मान जो सवाल तो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैम जगत वैक्सीन कैम उम्र ते पोलियो लगी सके तो कैम उम्र ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए

ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाइयों नव दहशतगर्द मार वया सिक्योरिटी जरिए मौजूद सिक्योरिटी फोर्सिस ज्यारत हरनाई सोराब में गुजी इतलाते ज्यारत हरनाई विच में जाबलू सिलसिले में गुजी इतलाते ऑपरेशन जै दौरान अठ दहशतगर्द मार वया सोराब के इलाके में हाजिका में एक दहशतगर्द जहनम भेड़ो मार वेल दहशतगर्दन वटा वही मकदार में हथियार हथ क्या व्या पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ्तारियों के पाकिस्तान से जोड़न जो इल्जाम रद्द कर छो भारतीय घरों वजीर जो दावाओं बेबुनियाद करार परदेह खाते के तर्जुमान जो चवण है त भारतीय गिरफ्तारियों पाकिस्तान ते इल्जाम सिर्फ अंदरूनी सियासी मकसद हासिल करण लाए प्रोपोगेंडा आहिन। DGISPR के समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधन से 6150 का शागिर्दन शागिर्दन से वेहक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कौमी सलामती दहशतगर्दी इतलाती जंग सोशल मीडिया के चैलेंजेस से गालू कई शागिर्दन के सवालन जा दलील से जवाब दिना।

0: एसपीआर ऑपरेशन सिंदूर बाबति तैयार कयल भारतीय दस्तावेजी फिल्म के हकीकतन जो उबतड़ करार ॾेई छॾियो आहे। एसपीआर पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त मारकाए हक़ खे हिकु साल गुज़रण बावजूद भारत हकीकत खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकीकतन जे उबतड़ ड्रामाई प्रोपोगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ बिगाड़े पेश करे रहियो आहे। पहलगाम वाके जा जवाबदार 28 जुलाई ते मारिजी विया त भारत 7 मई ते कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज़ में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कूड़ ते ॿधल आहे। भारत मारका हक़ में नाकामीअ खे तस्लीम करण बदिरां तारीख़ खे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई। मारका हक़ दौरान पाक भारत फ़ौजी जारहियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारतीय जहाज़ किराया ऐं ऑपरेशन बनियल मरसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तंसबियात खे कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो। अपने हर्मस पार करे निकरंदड़ जहाज ते हमले जी इतला। हमले जो एक जणो मारजी वियो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो आहे त जहाज के एक अणजातल नोइत जे निशानो बणायो वियो आहे। हमले में एक जणो मारजी वियो। जहाज जे इंजन रूम के नुकसान पहुतो। ईरान अमेरिका चिकतान घटाण में तुर्की किरदार अदा करण लाइ तयार। तुर्की जे सदर रजब तैयब अर्दगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप विच में टेलीफोनिक राब्तो। रजब तैयब अर्दगान चयो आहे त ईरान अमेरिका चिकतान घटाइण में तुर्की किरदार अदा करे रही आहे। ऐं चंबड़ भरिसां नौजवान जो फाओ खाधल लाश हथ घोट बचियल। लुंडवासी 30 वरनि जे सोनू कोली जो फसुल में वण में फाहो खाधल लाश मिलियो। वारसन जो चवणु आहे त नौजवान राति घरां निकिरी वियो हो। सुबुह जो वण में फाहो खाधल लाश मिलियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

अचन पजरन पाण में वेठो वेचारियो रोअन रणन की नकी जो इश्क आजारियो अयूब जी अंदर में बिरहल बीमारियो तालिब मौला तदही सूत्र के प्यारियो ये मोहब्बत जू

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शहर
1: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर,
0: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज, जीए सखर FM 88, सखर की आवाज,
1: जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज,
0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: इश्क का
1: चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद हो बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हो बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपको मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। तो सबसे पहले वक्त की बात करें तो 11:23 जो कि पाकिस्तान का मेरे वक्त तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको गाएंगे हैव अ सेफ सीजन, बट अलग दिन अवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस ये खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब। सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न सैटरडे हैव अ बजट टू यूज केला। वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। तो मेरी आवाज जिन-जिन गलियों और शहरों, शहरों शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घर और बाजारों, छोटी बड़ी कारों में परेशानों, ये आगे रोज हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगे ले जी आया नू सब जस्मुल्ला, बोंजोर शानिहा एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है। जा रहे हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
0: सिंह की हो तो आवाज भी सिंह की है. GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज.
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं. पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है. अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं. ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है. मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे. मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे.
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर. GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज,
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा
1: आहिनि।
0: Four, two, nine.

0: Sınade. Okay, किसका गाना है ये?
1: ये मुमताज मौलाई का गाना है.
0: मुमताज मौलाई का गाना है. चले मैं सर्च करती हूँ किसको डेडिकेट करना है.
1: जी जी आप सावन हिलू सुन रहा है मेरा प्रोग्राम शर्मी हिलू सुन रहा है ममता हिलू साहब सुन रहा है दवार मोहम्मद शमारी साहब सुन रहा है और जो भी सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम.
0: ओके जी अल्लाह हाफिज़.
1: और मुस्कान को भी.

0: कौन सा प्रॉब्लम, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं जी 8881 पे और कमेंट्स कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, दैट इज FM88 जी, FM88 इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको पोस्ट मिलती है पहली पहली, एंड वो होती है जिंदगी गुजार है, जिसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें एंड मेरा साथ दें. साथ साथ हम कॉल्स को रिसीव करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: अरमान अली मुल्तानी, आप मरो से.
0: अरमान अली पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: जी जी, पहले दफा.
0: ओके, प्रोग्राम सुनते हैं?
1: चार साल हमने किए, आपने एक भी नहीं उठाई, बड़ी बात है.
0: ये एक उठाइए तभी तो आपसे बात हो पा रही है. पहले मसरूफ थी, बस क्या करें, सबको यही शिकायत है कि मैं कॉल नहीं उठाती. असल में देखें, आप हैं और आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं रिसीव हो पाती, किसी और के लग जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो अब लग गई है, अब सारे गम और शिकवे शिकायत भुला के आप मुझे एक अच्छा सा गाना सुना दें.
1: बस ऐसे ना करो, पहली कॉल आई थी
0: नहीं, मजबूरी तो हम समझते हैं बिल्कुल, तभी तो कॉल्स लेते हैं आप लोगों की, आप सबकी. ओके, गाना गाना सुनाना है?
1: जी जी,
0: गा के सुनाए ना.
1: हम नहीं सुनाएंगे, आप सुनो.
0: मैं सुनाऊं? चले मैं सुनाती हूँ. किसको डेडिकेट कर रहे हैं?
1: डेडिकेट करते हैं साहब उसको, बरोबर.
0: ओके, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज. 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर. हेलो हेलो, कोई है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, तो हम चलते हैं आगे और साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी रिसीव होते जा रहे हैं मुझे.

और हमारा बैकग्राउंड भी पूरा पूरा खत्म हो चुका है, तो इसीलिए हम गाना प्ले करने जा रहे हैं. एंड द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल नूर अल खालिद की आवाज में. ठीक है, इसको सुनेंगे और साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो भी बताऊंगी. स्टे ट्यून्ड.

आज का जो टेम्पटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए. ठीक है, ये कहना है काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए. इसको आपने प्रैक्टिस करना है और जब हम अगले घंटे में वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बोलो तो माने. ठीक है, उसमें आपसे ये हम सुन रहे होंगे और जो बंदा अच्छा अच्छा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को. तो आपने कहना है कि काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो

गाना हमारा ऑलमोस्ट पूरा पूरा खत्म हो चुका है. सो हम क्या करेंगे, हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय हसन एंड रोशन. तो इसको हम सुनेंगे और इंजॉय करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे से प्ले करेंगे एंड यहां से हम इसको सुनना स्टार्ट करेंगे. स्टे ट्यून्ड, जर्सी कमर्शियल ब्रेक, साथ में न्यूज ब्रेक.

बिजली अढ़ाई रुपया फी यूनिट महंगी करण की तैयारी नेपरा में दरख्वास्त दाखिल सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी समूरे मुल्क में बिजली फी यूनिट 2.52 रुपया फी यूनिट महंगी करण के नेपरा में दरख्वास्त में दाखिल कराए छी है। नेपरा मूजिब सीसीपीए की दरख्वास्त बुधड़ी 27 अगस्त से थी मंजूरी की सूरत में वापेदारन से जीएसटी समेत 41 अरब रुपये जो इजाफो भार पव। ऑपरेशन रदुल फितना 3 तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाइयों 9 दहशतगर्द मारे वह सिक्योरिटी जरिए मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ज्यारत हरनाई और सोराब में गुजी इतलाते ज्यारत हरनाई विच में जाबलू सिलसिले में गुजी इतलाते ऑपरेशन कर जै दौरान 8 दहशतगर्द मारे वह सोराब के इलाके हाजिका में भी 1 दहशतगर्द जहनम भेड़ो मारे वह दहशतगर्दन वटा वही मकदार में हथियार हथ किया गया। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ्तारियों के पाकिस्तान से जोड़न जो इल्ज़ाम रद्द कर छोड़ो। भारतीय गृह वजीर जो दावाओं बेबुनियाद करार परदेह खाते के तर्जुमान जो चवण है तो भारतीय गिरफ्तारियों आए पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ अंदरूनी सियासी मकसद हासिल करने लाए प्रोपोगेंडा है। डीजीआईएसपीआर शिप 2026 में 21 हंधन से 6150 का शागिर्दन शागिर्दाणियों से वेक डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कौमी सलामती दहशतगर्दी इतलाती जंग ए सोशल मीडिया के चैलेंजेस से गालू कयूं शागिर्दन के सवालन जा दलीलन से जवाब दिना।

एसपीआर ऑपरेशन सिंदूर बाबति तैयार कयल भारतीय दस्तावेजी फिल्म के हकीकतन जो उबतर करार डेई छो एसपीआर पारा जारी कयल पदराई में वो है मुआरक हक के एक साल गुजरण बावजूद भारत हकीकत के मुंह डेण का इनकारी है। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तैयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकीकतन जो उबतर ड्रामाई प्रोपोगेंडा से बधल है। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ बिगाड़े पेश कर रो है। बेलगाम वाक़े जहा जवाबदार 28 जुलाई से मार्ज वाया भारत 7 मई से कें सजा डी। फिल्मी अंदाज में पेश कल यह समूरी दास्तान को उत बधल है। भारत मारका हक में नाकामी के तस्लीम कर बदर तारीख के पैंकी मर्जी मुताबिक पेश कर कोशिश कई। मारका हक दौरान पाक फौज भारतीय जारियत के नाकाम बणाईदे 8 भारतीय जहाज किराया ऑपरेशन बुनियान अलमसूस दौरान 28 भारतीय फौजी तस्वीर के कामयाबी से निशानो बणाए तबाह कर। आबना हरमुज पार करे निकरंदर जहाज से हमले की इतला हमले जो एक जनो मारजी वो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन इतला मिलो है तो जहाज के एक जन जातल नोत के पुर्ज टाइकल जहाँ निशानो बनाया वो है। हमले में एक जनो मारजी वो जहाज के इंजन रूम के नुकसान पहुंतो। ईरान अमेरिका चिकतान घटाण में तुर्की किरदार अदा कर तैयार है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में विच में टेलीफोनिक राबतो थो है। रजब तैयब एर्दोगान ईरान अमेरिका चिकतान घटाण में तुर्की किरदार अदा कर तैयार है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिल करण मुलाकातों बहाल करण बाबत केस की बुधनी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराई में बुधनी कर रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम 3 रुकनी बेंच जो हिस्सो है। केपीके जो वो वजीर सोहेल आफरीदी अदालत में पुरमीद। कराची में पेट्रोल लिवी और बेन मुतालबन की मंटाल जमायत इस्लामी जो 3 दिन भी एहतियात जारी। अमीर जमायत इस्लामी कराच मोहरिब जफर जो चवण है तो पेट्रोलियम लेवी के नाले से उगाड़ी टैक्स वापस वरतो वे। सजे पाकिस्तान के गवर्नर हाउसेज और पंजाब के वजीर आला हाउस में धरना शुरू थी वह हुकुमरान जवाम से जुल्म खत्म न थे तो भत्तो टैक्स लगाए अवाम के निपोड़ो पो वे। मीरपुर बठोरो में पानी खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज महमूदाबाद शाख में पानी की शदीद खोट के खिलाफ आबादगार हारिन मीरपुर बठोरो सजावल रोड से धरणो हो। ट्रैफिक मुअतल आबादगार चवण है तो पानी खोट सबब हजारे एकड़ पोखियल सारे जहा बीजारा सड़ी वाया पानी फराम कर मुआशी बदारी का बचाया वे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जिब्रील ने फलक से जमीन

0: ओके नेक्स्ट कॉलर लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे कौन है कहाँ से. जी हेलो,
1: वालेकुम सलाम,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: हबीबुल हसन की बाजी हटड़ी गुलाम
0: साहब. ओके प्रोग्राम सुनते हैं भाई?
1: जी प्रोग्राम सुनता हूँ, सारा प्रोग्राम जो
0: है सारा प्रोग्राम सुनते हैं. तो टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे
1: जो बाजी मैं गाना सुनाता हूँ नूरजान का, टंग ट्विस्टर नहीं आता मुझको. गाना
0: सुना दे.
1: गायक दुनिया तुम्हारे सुरीले रंग में निराले रंग में गायक दुनिया तुम्हारे.
0: ओके वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. और गाना सुनाने वाला सेगमेंट खत्म हो चुका है भाई लोगों. तो जितने भी लोग आ रहे हैं गाना सुना रहे हैं, गाना नहीं सुनाना, टंग ट्विस्टर बोलना है. आपने कहना है कि काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए. ठीक है, एक और कॉलर इंटरटेन करेंगे. हेलो अस्सलाम
2: वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है कहाँ से? रुखसार बात कर रही है मीरपुर खास से. रुखसार कैसी है?
2: मेरी एक रिक्वेस्ट थी तमाम लिसनर से, आप समेत के जो जो मुझे सुन रहा प्लीज मेरे हक में दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ.
0: ओके ठीक है, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और बहुत जल्द करे. आमीन
2: आमीन आमीन.
0: और कुछ कहेंगी?
2: याद रखे. नहीं बहुत शुक्रिया, मैं कब से आपकी कॉल लगाना चाह रही थी लेकिन कॉल लग नहीं रही,
0: कॉल नहीं लग रही थी. चले अब लग गई एक कॉल. और मुझे बताओ कि प्रोग्राम सुनती हो रुखसार?
2: रोजाना
0: सुनती हूँ.
2: परेशान थी,
0: चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत जल्दी परेशानियाँ दूर करेगा. और वो कहते हैं ना कि परेशानियाँ अपना हल साथ लेकर आती हैं, तो बिल्कुल आपकी परेशानी भी आपका हल साथ लेकर आई होगी. तो बिल्कुल चल रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी. ठीक है,
2: बहुत शुक्रिया.
0: ओके टंग ट्विस्टर बोलना है?
2: नहीं
0: ओके बहुत सारा ख्याल रखो रुखसार. एक रुखसार ने आज दूसरी रुखसार से बात की है. अच्छा वैसे मेरे नाम के जो लोग हैं ना वो बहुत कम होते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम जो है ना रुखसार नाम की लड़कियां होती हैं, मतलब ये नाम बहुत रेयर है. तो इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब भी. तो कमर्शियल ब्रेक हम प्ले करेंगे और उसी के साथ हम वापस आएंगे. स्टे ट्यून, जिंदगी गुलजार है.

0: It's 12:30 PM. This sound check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: जीए सक्कर, FM 88
3: सक्कर की आवाज.
4: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
5: अगर खूबसूरती खपे त आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स, एक्नी ऐं स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ऐं ॾिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक.
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
6: अक्सर माण्हू जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी. पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए.
7: हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: है, उम्र है आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और लास्ट लिंक में वापस आ चुके हैं जी. और मैं कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी लास्ट लकी कॉलर भी ले लूं. तो हम लास्ट लकी कॉलर लेंगे 03000113488 के ऊपर. लास्ट लकी कॉलर, हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद इस्माइल है, बुलशहर का.
0: मोहम्मद इस्माइल कैसे हैं? ठीक है,
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बाजी यहाँ सुनाओ.
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइए, प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह.
0: कौन सा है?
1: आपका रोज प्रोग्राम सुनता हूँ.
0: कौन सा?
1: मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM.
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है.
1: कैसी हैं बाजी, ठीक ठाक?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. लास्ट लकी कॉलर है, आप मुझे बताइए आज की अच्छी बात.
1: आज की अच्छी बात ये है कि किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए.
0: वेरी नाइस. और कुछ कहना है?
1: जी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ.
0: सुना दे.
1: मैं सुनाना ये चाहता हूँ. अजीब कमाल करती हैं आपकी यादें, अजीब कमाल करती हैं आपकी यादें. सोचूं तो बिखर जाऊं, ना सोचूं तो किधर जाऊं.
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. और कुछ कहना है?
1: बस और सबको मैं यही कहूंगा कि खुश रहें और खुश रहना सीखें, दूसरों को भी खुश रहने दें.
0: ओके, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज. और ये था लास्ट एंड लकी कॉलर. और इसके अलावा जी, प्रोग्राम का टाइम भी

आपसे इजाजत. और आज का जो सेगमेंट रहा है बोलो तो मानो, जिसमें आज के विनर्स हैं जी, या विनर्स क्या मतलब एक ही विनर है और वो है द वन एंड ओनली हमेशा की तरह सरदर्द. सरदर्द ने आज भी बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला. फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह.

सुप्रीम कोर्ट मानी पीटीआई के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सुप्रीम कोर्ट हुकुम ॾेई ॾिनो त पीटीआई बानी खे ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कयो वञे। अस्पताल ॿाहिरां अमन अमान जी सूरतहाल ख़राब न थियणु घुर्जे। अदालत हुकुम ॾिनो त अस्पताल इंतिज़ामिया मेडिकल बोर्ड जोड़े। बोर्ड में पीटीआई बानी जी भेण उज़मा ख़ान ऐं ज़ाती डॉक्टर बि शामिलु।

ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवाइयों नव दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिए मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ज्यारत हरनाई ए सोराब में गुझी इतलाते ज्यारत हरनाई विच में जाबलू सिलसिले में गुझी इतलाते ऑपरेशन किया वो जै दौरान अठ दहशतगर्द मार सोराब के इलाके हाजिका में भी एक दहशतगर्द जहनम भेड़ो मार वहल दहशतगर्दन वटा वही मकदार में हथियार हथ किया वह।

पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घरु वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परॾेही खाते जे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ प्रोपोगेंडा आहे। DGISPR जे समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधनि ते 6150 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दाड़ियुनि सां वेख। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती, दहशतगर्दी, इतलाती जंग ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजेस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा दलीलनि सां जवाब ॾिना। ISPR ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय दस्तावेज़ी फिल्म खे हक़ीक़तनि जे उबतड़ करार ॾेई छॾियो। ISPR पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त मोरकाए हक़ खे हिकु साल गुज़रण बावजूद भारत हक़ीक़त खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ीक़तनि जे उबतड़ ड्रामाई ऐं प्रोपोगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ खे बिगाड़े पेश करे रहियो आहे। पहलगाम वाके जा जवाबदार 28 जुलाई ते मारिजी विया त भारत 7 मई ते कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज़ में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कूड़ ते ॿधल आहे। भारत मोरकाए हक़ में नाकामी खे तस्लीम करण बदिरां तारीख़ खे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई। मोरकाए हक़ दौरान पाक फ़ौज भारतीय जारियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारतीय जहाज़ किराया ऐं ऑपरेशन बनियान अल मसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तस्मीनात खे कामयाबीअ सां निशानो बणाए तबाह कयो।

0: quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? Kiana says, quiet. Who are you with?
1: I'm with Sienna.
0: Fake news. You're fake news. You're loud. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
2: Mr. President, is there enough?
3: गोड़ करण वारी कूड़ी रिपोर्टर आहीं, कूड़ियूं खबरूं ॾींदी आहीं। अमेरिकी सदर औरत साफ़ीअ ते डमिरजी पियो व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान CNN जे रिपोर्टर अमेरिकी सदर खां सवाल कयो त सदर ट्रंप खेसि बेअदब चई नज़रअंदाज़ कयो। औरत साफ़ी ॾखण कोरिया बाबति सवाल कंदी रही, पर ट्रंप खेसि चुप करण जो चयो। तूं अजायो गोड़ कंदी आहीं, तूं कूड़ी रिपोर्टर आहीं ऐं कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं। USS लिंकन ते खाधे जी घटाई वारी CNN जी ख़बर कूड़ी हुई। अबना एर्मज पार करे निकरंदड़ जहाज ते हमले जे इतला हमले जो हिकु ॼणो मारिजी वियो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो इतला मिलियो आहे त जहाज खे हिकु अणॼातल नोत जे प्रोजेक्टाइल सां निशानो बणायो आहे। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं जहाज जे इंजन रूम खे नुक़सान पहुतो। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्की किरदार अदा करण लाइ तयार। तुर्की जे सदर रजब तैयब अर्दगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप विच में टेलीफोनिक राब्तो। रजब तैयब अर्दगान चयो त ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्की किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। बिजली 2.5 रुपया फी यूनिट महांगी करण जी तयारी। नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी समूरे मुल्क में बिजली फी यूनिट 2.52 रुपया फी यूनिट महांगाई करण जे नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल करे छॾी आहे। नेपरा मूजिब CCPA जे दरख़्वास्त ते ॿुधणी 27 अगस्त ते थींदी। मंज़ूरी जी सूरत में वापेदारनि ते GST समेत 41 अरब रुपयनि जो इज़ाफ़ी भार पवंदो। कराची में पेट्रोल लेवी ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मञता लाइ जमायत इस्लामी जो 3 ॾींहं बि एहतजाज जारी आहे। अमीर जमायत इस्लामी करीच मोहनम ज़फ़र जो चवणु आहे त पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते उगाड़ी टैक्स वापसि वरितो वञे। सॼे पाकिस्तान जे गवर्नर हाउसेस ऐं पंजाब जे वज़ीर आला हाउस में धरणा शुरू थी विया आहिनि। हुकुमराननि जा अवाम ते ज़ुल्म ख़तमु न पिया थियनि। भतो टैक्स लॻाए अवाम खे निपूड़ियो पियो वञे।

0: वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गैर कानूनी भर्तियुनि जो केस अदालत धुरिन खां जवाब तलब करे वरितो। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अदनान अलकरीम मेमण जी सरबराई में आईनी बेंच वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गुज़िरियल 5 सालनि दौरान गैर कानूनी भर्तियुनि ख़िलाफ़ केस जी ॿुधणी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी लेबर खाते जे सेक्रेटरी ऐं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जे सेक्रेटरीअ खां 3 हफ़्तनि जवाब तलब करे वरितो। मीरपुर भठोरो में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। महमूदाबाद शाख में पाणी जी शदीद खोट जे ख़िलाफ़ आबादगारनि निहारियुनि। मीरपुर भठोरो सजावल रोड ते धरणो हयो। ट्रैफ़िक मुअतल थी वई। आबादगारनि जो चवण आहे त पाणी खोट सबबि हज़ारे एकड़नि ते पोखियल सारियुनि जा विजारा सड़ी विया आहिनि। पाणी फराम करे मुआशी बदहालीअ खां बचायो वञे। चंबड़ भरसां नौजवान जो फाहो खाधल लाश हथायो आहे। ॻोठ बचल लुंड वासी टीह वरनि जो सोनू कोली जो फसल में वण में फाहो खाधल लाश मिलियो। वारसनि जो चवणु आहे त नौजवान राति घरां निकिरी वियो हो। सुबुह जो वण में फाहो खाधल लाश मिलियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगाइणु लाज़मी आहे।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

भी हो तो आवाज भी सिंकी है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज.

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। दंगल तमाम खूबसूरत मासूम सोने समाधान मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दो के समंदर चाहतों की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस तक दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियार सकरन मेहरापुर मांथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चलते के नाम मस्ती। बिल्कुल जी प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं, प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होगी, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगी, उसके अलावा आप लोगों को सुनाए जाएंगे जी बहुत अच्छे अच्छे वाले म्यूजिक कलेक्शन के साथ साथ आप लोगों के साथ होंगी जी इतनी सारी बातें। तो इतनी सारी बातें करने के लिए आप हमारे साथ जरा रेडी शेडी हो जाइए क्योंकि प्रोग्राम में आप लोगों का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाइए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और कैसे आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, क्या ये सारा प्रोसेस होने वाला है वो बिल्कुल समझाएंगे। वाकई आप लोग कितना जान चुके हैं मुझे। अरे इस बात को लेकर मैं कभी कभार ये सोचने लग जाती हूँ कि इतना तो मैं शायद खुद को नहीं जानती जितना आप लोग मुझे जानते हैं। अच्छी बात है वैसे ये। अगर ऐसा होता ना, अगर हम डेली बेसिस के ऊपर किसी से मिलते हैं, किसी से मुलाकातें होती हैं हमारी, तो हम ये जरूर समझ जाते कि अगला जो इंसान है वो कैसा है। क्योंकि कहते हैं ना मिलने से चीजें और बातें जो ना वो जरा खुलकर सामने आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही सीन है। अगर आप रोज किसी से मिलेंगे, रोज किसी से बातें करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान के बारे में तमाम चीजें तमाम बातें मालूम होना स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का हमारा बॉन्ड भी हो चुका है जी इस प्यारे प्रोग्राम में। तो आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम इन खुशामदीद। साथ ही साथ आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आप सर अपने हाल चाल बताइए। सो डियर लिसनर्स अंत की हालत आपकी हालत उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मोड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। और जनाब फाइनली हमने यहाँ पर एंट्रियां मार ही ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। यानी कि पूरी 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहिए। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं हम आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा हमारी लिस्ट में जरा मौजूद है तो हम ये प्यारा सा कसीदा आप लोगों के साथ सुन लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस मुखातिब आप लोगों के पास होंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा कसीदा यहाँ पर आपने हमारे के साथ सुना, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते का नाम असिया के सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, और जरा आपने होने का एहसास दिलाएंगे, और किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो बताएंगे, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है उसकी जानिब भी जरा आ जाते हैं। तो बिल्कुल जी, आज का जो सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सब लोगों ने मुझे ये बताना है कि वैसे वो तो पहले के दौर में होता था, जब घर में मेहमान आते थे तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे और घर में मतलब एक खुशी वाला माहौल होता था, लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो अगर मेहमान घर में आ जाते हैं तो सबसे पहले तो लोगों का मुंह बन जाता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ इस तरह होने वाला है कि आपने मुझे ये बताना है कि जब आप घर जाते हैं या फिर आपको घर में बताया जाता है कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, ये आज आप मुझे जरा बताएंगे। मैं जरा आज ये जानना चाहूंगी कि कहां कहां पर किन किन के घरों में अभी तक मेहमान नवाजी बाकी है ज्यादातर देखा जाए तो भाई ये जो सिस्टम है ना, तो ये थोड़ा सा आउट होता जा रहा है। और उसके अलावा चलें जी, आज हम जरा इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आपको बताया जाता है कि भाईजान आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर मेहमान आ चुके हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आपका क्या रद्दअमल होता है। और अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना, या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स यानी कि चोरी चोरी चुके चुके हमारा शो सुनते हैं, तो जनाब शामिल प्रोग्राम भी हो जाया करें। और क्या करना पड़ेगा

0: आपको आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRG सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, और पेज के ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ये तीनों काम आप लोगों ने करने होते हैं, तो लाजमी कीजिए ये तीनों काम। और हाँ, पोस्ट को लाइक तो जरूरी किया करें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सिर्फ कमेंट करते हैं, तो सिर्फ कमेंट करने वालों कंजूसों पोस्ट को लाइक और शेयर भी करना होता है। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और बताइए आप कहाँ कहाँ से मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, और इसी के अलावा टॉपिक को लाजमन आपने फॉलो करना है, और मुझे बताएं अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आपको बताया जाता है कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे बताएं आपका रद्द अमल क्या होता है।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे, मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
4: GFM 90.8।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

सॼो जवाब न ॾींदमि, किथे माइट न ॿुधी वठनि, ईअं न था अचणी छॾे ॾियनि। अदी अॻे रहमत हुआ महिमान, हाणे घणो रहण वारा ज़हमत आहिनि। हा, इन ते थोरो मतिलब इहो मां चवंदमि, अॼुकल्ह जे माण्हुनि में इहा चीज़ कोन्हे का, त अगरि तव्हां कंहिंजे घर वञो था त हुन अॻिले माण्हुनि जी प्राइवेसी जो बि ख़्यालु रखणो हूंदो आहे। ईअं न आहे त अॻिलो माण्हू तव्हांखे इजाज़त ॾे थो पंहिंजे घर रहण जी, त तव्हां सफ़ा बोरिया बिस्तर खणी अचे रही पओ। इहा चीज़ बि सही न आहे हूंदी वाक़ई। सो तव्हांखे अगरि अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि जेके ॿुधनि पिया बाबा, जेके तव्हां काॾे वेंदा आहियो ऐं तव्हां बसि टिकी पवंदा आहियो अॻिले माण्हू जे घर, त कुर्ब मिले थो त बसि रही पऊं था, त अॻिले माण्हू जी थोरो प्राइवेसी जो बि ख़्यालु कंदो। हाणे अॻिलो माण्हू तव्हांखे कोन चवंदो न त तव्हां निकिरी वञो बसि हलो घर असांजे मां, पर तव्हांखे इहो ख़्यालु रखणो आहे, सभिनी माण्हुनि खे हिन चीज़ जो ख़्यालु रखणो आहे। काॾे तव्हां वञो, सिक कुर्ब सां वञो, ऐं तव्हांखे जेतिरी सिक कुर्ब मिले थी त बसि कुझु टाइम हुते रही पोइ तव्हां वापसि मोटी अचो। हर कंहिंजी प्राइवेसी जो ख़्यालु करणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे।

बिल्कुल सी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं क्या बात है। और यहाँ पर हमारे साथ ही हमारी निदड़ी कहती हेलो स्वीटी वेलकम टू शो सॉरी फॉर लेट कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वफा सूफी बलोच कहते उफ अरे आज ही आना था इन्होंने अच्छा ये दोबारा से आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है। और उनके अलावा प्रेमचंद भाई हमारे साथ हैं गोठ जान मोहम्मद जड़े जो प्रेम मिस्त्री साहिल बाजी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा हिदायतुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके आज ये सॉन्ग चला दे अच्छा अच्छा सही आमा समझी हो। उनके अलावा निदड़ी के दिन टॉपिक मुझे तो जरा पसंद नहीं मेहमान क्योंकि कोई भी आता है फिर मेरा सारा दिन बिजी जाता है इसीलिए मुझे गुस्सा आता है जब कोई घर आए तो।

तभी मेरा आज दिल किया कि मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ लूं। मैं जानना चाहूंगी कि मेरे जो लिसनर्स हैं भाई, उनका क्या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या बताते हैं कि अगर उनके घर मेहमान आ जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, या उनके दिल में क्या होता है। बाजार तो हमें जाना पड़ता है, मुस्कुराते हुए मेहमानों से मिलना पड़ता है, लेकिन दिल में क्या चल रहा होता है ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।

अच्छा साकिब अली पवर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं कैसी हैं? मैं मायरा हूँ। अच्छा मायरा हमारे साथ ही, सलाम दीजिएगा अनमोल को। चलें अनमोल को आपका सलाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं मायरा। और हैं जी हमारे साथ मायरा दोबारा, कहते हैं सिद्रा यार आप मुझे सॉन्ग तो सुनाए ना प्लीज, अगर नहीं सुनाएंगी तो फिर भी ठीक है, वैसे भी मैं तो आपको सुनने आती हूँ सॉन्ग नहीं। चले मैं आपकी पसंद का गाना लगाऊंगी, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? और कहती हैं एक बात तो बताओ, आपकी आवाज बहुत प्यारी है ये सच्ची? नहीं यहाँ पर कुछ वॉइस चेंजर लगाकर बोलती हूँ। ये कैसा सवाल है।

क्या ही बात है। सनाला फलपोटो हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कहते सिद्रा मुस्कान, मीठी आवाज की मालिका सिस्टर सिद्रा, मैं खैरपुर से हूँ। खजूर खाओ भेजू। नहीं नहीं, भेजी वाला सिस्टम नहीं है इधर, बाकी आप खाइए, मुंह आसाने करे खाए जो सही। और रशीद कौसु भाई भी सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं क्या हाल है अदी, शाह बुखारी दरगाह से हैदराबाद से आपका शो सुन रहे हैं। क्या बात है जी, आपको वेलकम कहा जाता है थैंक यू के साथ साथ। और उनके अलावा नदड़ी कहती है कि लड़कों के लिए अच्छी बात होगी। नहीं, मुझे ये लगता है कि लड़कों के लिए ये होता है कि लड़कियां तो घर में बैठी होती हैं, मेहमानों से बस बातें करती हैं। लड़के बेचारे जाते हैं, गर्मियां हो सर्दियां हो, बाहर से जाकर चीजें लेकर आते हैं जो मेहमान खाते हैं। तो लड़कों के लिए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। वो भी अच्छे हैं, उनका भी बराबर का काम होता है। और कहती है ऐसा बोलो ना, ये आरजनी AI। हाँ बाबा, मैं AI हूँ।

बात है बिल्कुल जी, आप लोगों के साथ है, चैट चल रही है हमारी। मुझे कहते हैं बिल्ली, हम मुझे कहते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ है स्टेशन अब्दुल्लाबाद खां मारूफ हुसैन शेर, प्रोग्राम सुठो हले पयो, प्लीज प्ले सरमन सिंधी, सलाम टू ऑल संगत। ओके ओके भाजी, फरमाइश सलाम जी, कोशिश कयूं था, थैंक यू तुम्हारे सगड़ मौजूद आए। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं मेहमान भले आए मगर बस आपके शो के दौरान ना आए, डिस्टर्ब हो जाता है। अले अले। और चाचा खालिद कहते हैं हम घर आए आपके पास तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? भाई मैं मेहमानों को अटेंड ही नहीं करती, ये अम्मी के काम होते हैं। मैं जैसे इधर हूँ ना बिल्कुल उलट हूँ, उलट मतलब अपनी रियल लाइफ में मैं किसी से बात ही नहीं करती। तो मेहमान आ भी जाते हैं थोड़ा दुआ सलाम करके फिर अपने काम से लग जाते हैं।

अभी बिल्ली से याद आया, हमारे घर में चार बिल्लियां हैं। एक बड़ी बिल्ली है, उसने तीन बच्चे दिए हैं। हाय, इतना ना कोई बेजार कर देते हैं बिल्ली के बच्चे। घर में अगर कोई एक इंसान ऐसा होता ना, जो भाई एनिमल लवर होता है, जिसको सारी चीजें पालनी होती है, बिल्लियां भी पालनी है, कुत्ते भी पालने हैं, तोते भी पालने हैं, कबूतर भी पालने हैं, तो ऐसा इंसान मैं चाहती हूँ घर में नहीं होना चाहिए। उसको अलग से कहीं बिठा दो या उसको जू में छोड़ कर आ जाओ, वरना फिर वो इंसान आपके घर को जू बना देता है। या इसी

हाय सैया कहीं ना गलत गा गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। गाना सुनेंगे उसी के साथ साथ आप क्या कह रहे हैं जी, आपके मैसेजेस के जाने भी आते हैं।

अच्छा वासु भाई के दी अदी सिडो जवाब मेहमान भली अचन पर है कि रात रहन अदी पर या भी गाला है। अच्छा मायरा कहती माशाल्लाह सिद्रा मेरे हस्बैंड मुझसे जब लड़ाई करते हैं तो मैं आपका शो सुने आ जाती हूँ, कसम से सारा दुख भूल जाती हूँ और डांस करना शुरू हो जाती हूँ। बस ॾिसो असा दुख वारे माण्हुनि खे भी खिलाए छॾींदा आहियूं। वैसे यार सुठी ॻाल्हि आहे, बस दुख न कंदा कयो हस्बैंड वीचारे जो। ऐं उन खां अलावा नदी कहती है उनको ना मेहमानों के साथ बिठाया ही नहीं कर। सही है। अच्छा मोहम्मद राशिद अवान की थी सिस्टर सिद्रा, रेगुलर की तरह आपके प्रोग्राम को खूब एंजॉय कर रहा हूँ, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। अच्छा मोहम्मद मीरन जखनानी भाई में ज्वाइन कर चुके हैं, जेकब अबासी आपको भी वेलकम कहते हैं। राशिद अमान भाई कहते हैं राज रखे हुए हैं तेरे पास, तुझको रखा हुआ है राजू में। आए हाय ओ या गाल।

0: भगवान जी पता नहीं कब मिल सो, बस न मिल सो तो भलो हुआ. ना मिल सो.
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़.

सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सुप्रीम कोर्ट हुकुम ॾिनो त पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ियो वञे। अस्पताल ॿाहिरां अमूनमान जी सूरतहाल ख़राब न थियणु घुरिजे। जस्टिस शाहिद वहीद चयो त मेडिकल रिपोर्ट मूजिबि पीटीआई बानी जी न नब्ज नॉर्मल आहे, न ई दिल वाइटल ऑर्गनाइज बि मुतासिर थियणु शुरू थी विया आहिनि। ए जे इस्लामाबाद पीटीआई बानी सां संदसि भेणनि जी मुलाक़ात बाबति अदालत खे आगाही ॾिनी त जेको कानून जी भञकड़ी कंदो त मुलाक़ात न थींदी। अदालत चयो हो त कानून जी भञकड़ी कनि त तव्हां बि कंदो, रियासत जो कमु कानून जी भञकड़ी करणु न आहे। भेणनि सां मुलाक़ात उन्हनि ते थोरा न आहिनि पर इहो संदन बुनियादी हक़ आहे। अदालत मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ज़िमेवारी घुरी। सलमान अकरम राजा मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ख़ातिरी कराई। ॿुधणी 16 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत में नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीअ ते अमल दरामद बाबति इजलास। वज़ीर-ए-आज़म पारां नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण लाइ मरतूब ऐं सराहता क़दम यकीनी बणाइण जी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त हुनरमंद ऐं बासलाहित नौजवाननि खे बाइज़त रोज़गार फराहम करणु हुकूमत जी पहिरीं तरजीहनि में शामिल आहे। मुल्क जे समूरनि इलाइक़नि ख़ासि तौर ते बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय गृह वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परॾेही खाते जे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ु अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ प्रोपेगेंडा आहिनि। पाकिस्तान दहशतगर्दनि खे मालिकी सहकार फराहम करणु समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़े सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय तकरीबकारी तां आलमी ध्यानु न हटाए सघनि। ऑपरेशन रदुलफितना टे तहत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं वधीक 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस ज़ियारत हरनाई ऐं सोराब में ॻुझी इतला ते ज़ियारत ऐं हरनाई विच में जाबलू सिलसिले में ॻुझी इतला ते ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान 8 दहशतगर्द मारिजी विया। सोराब जे इलाइक़े हाजिका में बि हिकु दहशतगर्द जनम भेड़ो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे मक़दार में हथियार हथ कया विया आहिनि। DGISPR जे समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधनि ते 6,150 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि सां वेक। DGISPR आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती दहशतगर्दी इतलाती जंग ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजिस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा जवाब ॾिना। ISPR ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय दस्तावेज़ी फिल्म खे हक़ीक़तनि जे उबतड़ करार ॾेई छॾियो। ISPR पारां जारी कयल पधिराई में चयो वियो आहे त मार्क ऐं हक़ खे 1 साल गुज़रण बावजूदु भारत हक़ीक़त खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ीक़तनि जे उबतड़ ड्रामाई ऐं प्रोपेगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ खे बिगाड़े पेश करे रहियो आहे। पहलगाम वाक़िए जा जवाबदार 28 जुलाई ते मारिजी विया त भारत 7 मई ते कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज़ में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कू ते ॿधल आहे। भारत मौका हक़ में नाकामी खे तस्लीम करणु बदिरां तारीख़ खे पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई आहे। मौका हक़ दौरान पाक फ़ौज भारतीय जहारियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारतीय जहाज़ किराए। ऑपरेशन बुनियान अलमसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तस्बियात खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो।

0: quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
1: I'm with CNN.
0: Fake news. You're fake news. You're loud. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
2: Mr. President, is there enough...
3: तू गोड़ करण वारी कूड़ी रिपोर्टर आहीं कूड़ियों खबरों ॾींदी आहीं अमेरिकी सदर औरत साफ़ीअ ते लमरजी पियो व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान सीएनएन जी रिपोर्टर अमेरिकी सदर खां सवाल कयो त सदर ट्रंप खेस बेअदब चई नज़रअंदाज कयो औरत साफ़ी ॾखण कोरिया बाबति सवाल कंदी रही पर ट्रंप खेस चयो चुप कर तूं अजायो कू गोड़ कंदी आहीं तूं कूड़ी रिपोर्टर आहीं ऐं कूड़ियूं खबरूं ॾींदी आहीं यूएसएस लिंकन ते खाधे जी घटाई वारी सीसीएन पूरी ख़बर आई अबना हर्मस पार करे निकरंदड़ जहाज ते हमले जी इतला हमले जो हिकु ॼणो मारिजी वियो बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो त इतला आहे त जहाज खे हिकु अणॼातल नोएत जी ब्रिज टुकायल सां निशानो बणायो वियो आहे हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं जहाज इंजन रूम खे नुक़सान पहुतो ईरान अमेरिका चिकटाण घटाण में तुर्की किरदार अदा करण लाइ तयार तुर्की जे सदर रजब तैयब अर्दगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप विच में टेलीफोनिक राब्तो थियो रजब तैयब अर्दगान चयो त ईरान अमेरिका चिकटाण घटाण में तुर्की किरदार अदा करण लाइ तयार आहे बिजली 2.5 रुपया फी यूनिट महांगी करण जी तयारी नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी समूरे मुल्क में बिजली फी यूनिट 2.52 रुपया फी यूनिट महांगी करण जी नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी आहे नेपरा मूजिबि CCPA जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी 27 अगस्त ते थींदी मंज़ूरीअ जी सूरत में वापेदारनि ते GST समेत 41 अरब रुपियनि जो इज़ाफ़ी भार पवंदो कराची में पेट्रोल लेवी ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मञता लाइ जमायत इस्लामी जो 3 ॾींहनि जो एहतजाज जारी अमीर जमायत इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र चयो आहे त पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते उगाड़ी टैक्स वापसि वरितो वञे सॼे पाकिस्तान जे गवर्नर हाउसेस ऐं पंजाब जे वज़ीर आला हाउस में धरणा शुरू थी विया आहिनि हुकुमराननि जा अवाम ते ज़ुल्म ख़तमु न पिया थियनि भतो टैक्स लॻाए अवाम खे निपूड़ियो पियो वञे

0: वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गैर कानूनी भर्तन जो केस अदालत धुरन खां जवाब तलब करे वरतो। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अदनान अलकरीम मेमर की सरबराई में आईनी बेंच वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गुजरियल 5 साल दौरान गैर कानून भर्तियुनि खिलाफ़ केस जी ॿुधणी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी लेबर खाते जे सेक्रेटरी ऐं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जे सेक्रेटरीअ खां 3 हफ़्तनि में जवाब तलब करे वरितो। कराची में कार सवार हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल ते फायरिंग, पसंद जो परणो कंदड़ नारी क़तल। गुलशन हदीद लिंक रोड ते कार सवार हथियारबंदनि मोटरसाइकिल ते फायरिंग करे कुझु वक़्तु अॻु पसंद जो परणो कयो हो। नारी फातिमा खे क़तल करे छॾियो आहे। फायरिंग जे नतीजे में औरत जे मुड़ुस अकबर समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो आहे। थारू शाह भरिसां मुबैना तौर ज़हरीलो खीर पीअण सबबि 2 मासूम भाइर फोत थी विया आहिनि। ॻोठु करीमदाद सियाल में ज़हरीलो खीर पीअण सबबि 6 वरियनि जो रिज़वान ऐं 8 वरियनि जो रिहान सियाल फोत थी विया। फोती ॿारनि जे वालिद जो चवणु आहे त राति देरि सां ॿारनि खीर पीतो, जंहिं बाद ॿारनि खे पेट में सूर पियो। ॿारनि जा लाश घर पहुचण ते रोज़ राणो मची वियो। मीरपुर भठोरो में पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। महमूदाबाद शाख में पाणी जी शदीद कोर्ट जे ख़िलाफ़ आबादगारनि ऐं हारियुनि मीरपुर भठोरो सजावल रोड ते धरणो आयो। ट्रैफिक मुअतल थी वई। आबादगारनि जो चवणु आहे त पाणी कोर्ट सबबि 1000 एकड़नि ते पोखियल सारियुनि जा वीचारा सड़ी विया आहिनि। पाणी फराहम करे मुआशी बदालीअ खां बचायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो। रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
4: जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड,
1: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
0: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
1: मिलेगी लॉट्स ऑफ मस्ती
0: ओनली ऑन GFM 88 नेटवर्क।
2: वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातिली और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। जल्दी का नाम से सुनने वाले समाधों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जी आप लोगों की मोहब्बतों समाधों चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो ऐसा किया करें, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं

आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि आज के टाइम में अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं और आपको बताया जाता है कि भाई मेहमान आ चुके हैं घर में या मेहमान आ रहे हैं आज हमारे घर, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं या फिर आप क्या करते हैं? क्योंकि आजकल के दौर में मैंने ये चीज बड़ी नोटिस करी है कि मेहमानों का आना या फिर किसी के घर जाना, ये चीज थोड़ी सी आजकल के टाइम में मुश्किल हो चुकी है। वो वाला सीन हो चुका है कि लोग इसलिए शायद किसी के घर नहीं जा रहे कि क्या पता वो हमारे घर ना आ जाए। तो ये ऐसा होता है बिल्कुल, अगर हम उनके घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे घर आएंगे। तो ये चल रहा है आजकल, चीजें जो है वह बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। रिश्तेदारियों को देख लें, अब पता नहीं ये क्या रीजन है भाई, क्यों ऐसा सिचुएशन सारी हर तरह बन चुका है कि भाई हम खुद ही सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, पहले तो ऐसा नहीं होता था। कुछ सालों में ऐसा क्या हो चुका कि भाई ये चीजें इधर की उधर ही हो चुकी हैं। चलिए आप जरा इसके ऊपर मुझे बताएंगे कि आपका क्या कहना होगा, और उसके अलावा जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सके और वो भी बता सके कि वो भी हमारे साथ मौजूद है। ऐसे के साथ साथ टॉपिक को फॉलो कीजिए, और यहाँ पर आप हमारे साथ हैं तो बिल्कुल आपको शामली प्रोग्राम रखा जाएगा आपके मैसेजेस हैं, लेकिन मेरे पास जो आपको सुनाने के लिए गाने मौजूद है तो हम जरा ऐसा करते हैं कि एक अदद गाना आप लोगों को सुना देते हैं। तो हमारी लिस्ट में बहुत ही प्यारा सा एक गाना मौजूद है जिसकी हमें फरमाइश सादिया ने कर दी थी, दो तीन दिनों से बेचारी गाने की फरमाइश करती आ रही थी, तो ये गाना हम सादिया को डेडिकेट कर देते हैं और गाना एंजॉय करेंगे। गाने के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आपके मैसेजेस कमेंट्स की जाने बातें, क्योंकि आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, इनकी आवाज।

अलाए जी छा था छो गाल तो समझ में अच्छे कोने थी अरे कहना क्या चाहते हो अभी मैं भी आपकी तरह उल्टी हूँ मेहमानों को बस दुआ सलाम करके मैं अपने रूम में छुप जाती हूँ या कोई काम करती हूँ कुछ लोगों की ऐसी नेचर होती है अब नेचर के ऊपर तो इंसान जो है ना नेचर के अगेंस्ट तो कुछ कर ही नहीं सकता ना जेडी इंसान की तबियत होंगी तो उन्हें हिसाब से पानी जिंदगी गुजारी दो नहीं गाल के समझ ना करो उनके अलावा तमाम पोस्ट के लाइक एंड शेयर के ना हलो ओके जी सो ही एकड़ो डाडो भलो गानो जी को शायद ओबर जी आवाज में सा लिस्ट में लगाया हुआ है नहीं फरमाइश असा के कैया

0: नफरत थी।
1: ओके जी, खास के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अकबर खास के लिए। हिन गाने जी तमाम फरमाइश कया सो ही गानों बिल्कुल एंजॉय करना सी गजी आई तो था तो सा मिलन जो हसरतों अन्या भी अधूरी हुआ है। ओ फिलानी उम्मीद आहे जिंदगी जी के मोड़ ते मिलदा सी। वाह साईं वाह। अच्छा मोहम्मद सलमान भाई लिखते हैं कि मेहमानों के लिए 24 घंटे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, बेशक रोजाना आए लेकिन

0: लेबर
1: ओके कहते हैं जितना जल्दी आए उतना जल्दी वापस चले जाए, ना वो बोल रहे हैं ना हम ऐसे एंजॉयमेंट करेंगे खाने पीने की, तो पास से भी ना गुजरे वरना मेहमानों से अल्लाह तो वाकिड़ा बनवायो अल्लाह था हकीकत ॿुधाए मां बि चवंदी आहियां बसि काॾे घुमण वञे मां पाण ई आहियां काॾे घुमण वञूं त बसि अधु कलाकु वञूं कलाकु वञूं ज़्यादा टाइम न वञूं अगरि कोई अचे त उहो बि ईअं ई अचे हाणे सॼी दुनिया असांजे हिसाब सां त कोन हलंदी न सो बिल्कुलु थोरो बर्दाश्त करिणो पवंदो आहे

मरियाम अली जितोई हमारे साथ ही थे. सिद्रा हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो. एंड सलाम हो दिल से आपको. एंड बेस्ट म्यूजिक ऑल एंड लवली. थैंक यू वेरी मच.

वाह साईं वाह, ॾाढो पहिलो गानो जेको तव्हां एंजॉय कंदा आहिनि, गाने खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहिनि, ब्रेक खां पोइ वापसी वरी तव्हां सां गॾु आहे। सो तव्हां कॾहिं हिन मुंहिंजो हिते वेठा हुजो, तव्हांजो असांजो साथ पूरी टे बजे ताईं मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटावां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क, और सुनती रहिए चलती कना मस्ती।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम
2: जिसकी तामीर पर होती है वाह वाह
3: मजार है वो मीर मासूम शाह का.
4: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त अस जडे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो. मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असावट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नेमत आए. बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए. असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए. ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी. 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए.
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आपका शो पसंद आ गया है, आज भी रिदा प्रोग्राम सुन रही है। हेलो रिदा।

सफा डाडुआ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या हाल है आप? ठीक हैं आप? मैं सुरैया फ्रॉम पनो आकिल से, आपका शो नाई से फर्स्ट टाइम आपका शो, अच्छा फर्स्ट टाइम आपके शो में शामिल हुई हूँ। प्लीज मुझे आज लाजमी मुनव्वर मौलाई का सॉन्ग सुनाना, हथम हथे क्या सी डाढो आई गानो सोनी जी नाले। सुरैया तवा के जो था भली करी आया तवा सने प्रोग्राम में, थैंक यू। छा चवण वारी से एक तुझे लाए पांजा भी छड़िया धारिया भी छड़िया

बिल्कुल पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. वैसे वो वाली बात हो गई ना कि मुझे तो लीव मी अलोन कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग वैसे ही छोड़ जाते. हाँ अल्लाह सही गाल तो है. सुनाला फिलिपोटो कहते हैं, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का ना होने दे. हाँ ओ या भली गाल कही, तई सफा भली गाल कही.

अच्छा फहद भाई जान, आपका बहुत शुक्रिया. आप हमारे सारे बहुत सारे आपने कमेंट कर दिए हैं और प्यारी रिदा को भी वेलकम करते हैं. अखलाक भाई कहते हैं कि अजकल जा मानू मेहमान लाए हाँ ता सही था जो ता जड़ो कोई भी ना बाबा बकिलो ता मटन खा रहा था मेहमान. सही गाल. अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम से उस्ताद बुखारी जी शायरी हाजिर आहे उन खां पो दिसूं त केड़ो गानो ता हलायो गानो ता सेटा पाणे हली वेंदो बाकी उस्ताद बुखारी छा तो फरमाए यो दिसी था वठो. अच्छा लिखो था कासिद वनी यार रखे चो का नाजुक घड़ी बीमारी जिया जेड़ो हाल दिसी तेड़ो पेश कजा तोखे कसम तुझे परवरदिगार जो आ सीला करे हकीम थकिया सदा आजार जिया केड़ो इलाज उस्ताद करे जेंके तलब सोने जे दीदार जिया वाह वाह वाह वाह. मोहम्मद जमान भाई कहते हैं पैसे वालों पर यकीन करें बस गाल में दम आवे से असा पांड पैसा कमाए ये भी सही है. ओके जी ॾाढो भलो गानो ॿुधो सी ॾाढो भलो ॿियो गानो आहे जेको असां ॿुधंदासीं. मां भला किना गाना हलाईंदी आहियां न नी ॾिसो हिन लाइ भला भला गाना ॿुधंदासीं. अच्छा मायरा कहती है सिद्रा टॉपिक में तो बहुत खुश होती हूँ जब हमारे घर मेहमान आते हैं क्या बातें क्या बातें. दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी कैसी हैं वेलकम टू शो अमेजिंग वॉइस माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच थैंक यू स्वीटी. प्रेमचंद भाई हमारे साथ हैं. प्रेमचंद भाई तवां जो मोहब्बतू आहिनि प्रोग्राम तवां ॿुधो.

पंहिंजो पोस्ट को लाइक ऐं शेयर कीजिए. सनाला फुल पोटो भाई, तव्हां शमन जे गाने जी फरमाइश कई आहे. मां कोशिशि कयां थी तव्हांजी पसंदि जो गानो हली वियो त हलाईंदा न त 5 बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधी वठंदासीं. ठीकु आहे. अनवर भाई खे टॉपिक अदी आप जैसा कोई महिमान आ जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा. बहरहाल अच्छे मेहमान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जो भी हाल हो उनकी खातिर तवाज़ुन करनी चाहिए क्योंकि वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ अनमोल तोहफा होते हैं. ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. वासु भाई कहते अदी से डो तमाम बुधायो मां बुधाए छड़े बुधाए छड़े तमाम न बुधो चावला मसे मसे मशहूर लिखी लिखी जो लोग हिदायतुल्ला कहते हैं सदरा जो थोड़े बहुत सलाम दुआ है रिश्तेदारों से वो जाएगी. टॉपिक आजकल ऐसे रखती हो भाई असा उथंदा वेंदा ना आयो रिश्तेदार सा असा उथण वेणी या हु वेंदा दसाओ थी वेंदा आयो अच्छा जंहिंजा गाना रहिजी वञनि था तव्हां 5 बजे वारे प्रोग्राम में अचिजो तव्हांजो फरमाइशूं हलाईंदासीं. ठीकु आहे, ॾिसो मां केॾी भली आहियां.

दर्द दिल के दिन टॉपिक चंदा जाने, मैं तो खुश होती हूँ। वैसे चंदा तुम कैसे जान लेती हूँ, आज मेहमान आए हैं, प्यारी पुप्पो आई है। वाह साई वाह, पुप्पो बड़ी प्यारी खोड़ो ही न थो लगे मत ताज लग मिली गल जी। ये खास के लिए थैंक यू थैंक यू। बक्तली सियाल भाई वेलकम हो गया आपका भी। रमजान अली भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम।

अख्तियार अली सिंधी भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू. रमजान अली भाई थैंक यू. आपके मैसेजेस कुछ रेज जाएंगे तो जल्दी से पढ़ लेते हैं. एस एन अली आरबाणिया में ज्वाइन कर चुके हैं. हेलो मैडम मुस्कान में भी साथ साथ हूँ, आपको वेलकम कहते हैं. एस एन अली आरबाणे और हैं जी निदड़ी. हाँ बोलो. अच्छा मायरा कहती है मुझो गानो तांजो गानो पंजी बजे वाले प्रोग्राम में बुद्धि उठना सी. ठीक है, साइकिल वाला गाना भी पंजी बजे वाले प्रोग्राम में बुद्धि उठना सी. हजार कंजो तो ही भाई हमारे साथ है. हजार बार तांजो मोहब्बत हुआ डीपी मिटाया है और खेलता है. हाँ हाँ ऐसा समझो, इतरो तो समझो मैं अच्छे पड़े. बाबा कल हलो हुयो पंज

जल्दी छो तो गुजरे बियो बियो ही वारो गानो भी असांखे ॿुधणो आहे ही हलाईंदासीं बाबा मक़सूद मलाजी फरमाइश ते गानो और ये माजूद है वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान को सो छोकरी सिंदरा मुस्कान तांजो आवाज भलो आहे हाणे सिंधी गालाईंदा कयो मां कोशिश कंदी आहियां भाउ मां प्रोग्राम में इलाही सिंधी ॻाल्हायो ओहिड़ी सिंधी ॻाल्हायां पर थोरो थी वेंदो आहे सिंधी मुंहिंजी तिरकी पवंदी आहे और साइमा मीर कहती है वाह सिंदरा वाह जियो अपनी दुनिया में मस्त हम अलग दुनिया है वाले हैं जिन्हें आज तक कोई समझ ना सका क्या पता आगे कोई समझ भी ले मुख इतना ही लगे पर हाँ चलो अल्लाह में उम्मीद रखे और कहती सलाम अम्मी जान मरियाम भाई और भाभी को टॉपिक ईद का समा होता है जैसे उस दिन हो सब खुश और मस्ती मजाक होता है जिस दिन मेहमान आते हैं क्या बात है बहुत बढ़िया और कहती है साइमा मीर ओ देखो प्यारी मेरा गाना कितने रह गया भूल गई ना कौन सा तुम तो आई अभी हो भाई लास्ट लिंक में पहुंची या साहिबा वरी चेती ॾिसो मुंहिंजो गानो न हलायो हाणे वठी कुटकी ॾियण जहिड़ी आहे न डॉक्टर हसीना साहिबा हमारे साथ सिदरा मुस्कान असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा

0: सब समझाती, सब समझाती। न न अखलाक भा कावड़ न बस यो त थोड़ो सुञाणे न सघे मां ई हुंदो आ न मतलब डीपी खबर हुंदी आ त माण्हू सुञाणे वेंदो आ त नालो पढ़ियो त खबर पई छा ई हज़ार भा सही सही सही इजाज़त वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मिलूं था पंजे बजे वारे प्रोग्राम में। सो ज्वाइन कंदा आहियूं जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि उहे पंजे बजे वारे प्रोग्राम में हलाईंदा। सही आहे, पंहिंजो उहो एॾो सॼो ख़्यालु रखंदा, किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत बाबा। जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि, गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।
1: ثقافت سے سجی
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो बि हुकुम। अस्पताल ॿाहिरां अमन अमान जी सूरतहाल ख़राब न थियणु घुर्जे। जस्टिस शाहिद वहीद चयो त मेडिकल रिपोर्ट मूजिबि पीटीआई बानी जी न नब्ज़ नॉर्मल आहे, न ई दिलि। वाइटल ऑर्गनाइज बि मुतासिर थियण शुरू थी विया आहिनि। ए जी अस्पताल इस्लामाबाद पीटीआई बानी सां संदसि भेणनि जी मुलाक़ात बाबति अदालत खे आगाही ॾिनी त जेको कानून जी भञकड़ी कंदो त मुलाक़ात न थींदी। अदालत चयो त हू कानून जी भञकड़ी कनि, तव्हां बि कंदव। रियासत जो कमु कानून जी भञकड़ी करणु न आहे। भेणनि सां मुलाक़ात हुननि ते थोरा न आहिनि, पर इहो संदसि बुनियादी हक़ आहे। अदालत मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ज़िमेवारी घुरी। सलमान अकरम राजा रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ख़ातिरी कराई। ॿुधणी 16 सेप्टेम्बर ताईं मुल्तवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत में नेशनल यूथ इम्प्लॉयमेंट पॉलिसीअ ते अमल दरामद बाबति इजलास। वज़ीर आज़म पारां नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण लाइ मरतूब ऐं सराहिता क़दम यकीनी बणाइण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त हुनरमंद ऐं बासलाइत नौजवाननि खे बाइज़त रोज़गार फराहम करणु हुकूमत जी पहिरीं तर्जीन में शामिल आहे। मुल्क जे समूरनि इलाइक़नि ख़ासि तौर ते बलूचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे।

पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय गृह वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परॾेही तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ आहिनि। भारत दहशतगर्दनि खे माली सहकार फ़राहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण जाधव केस वाज़े सबूत आहे त बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय दहशतगर्दीअ तां आलमी ध्यानु हटाए नथा सघनि। ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं वधीक नव दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस ज़ियारत हरनाई ऐं सोराब में गुझी इतलाउ ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान नव दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾी मक़दार में हथियार बि हथ कया विया। GISPR जे समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधनि ते 6,150 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दाणियुनि सां वेक। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी क़ौमी सलामती, दहशतगर्दी ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजिस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा जवाब ॾिना।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: सिंध काबीना 25 एकड़ ताईं ज़मीन रखंदड़ कणक जे आबादगारनि लाइ DAP सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नवनि हारनि जे रजिस्ट्रेशन ऐं मौजूदा रजिस्ट्रेशन जी ॿीहर तस्दीक जी पिणु मंज़ूरी। 3,13,000 रजिस्टर्ड हारनि खे मजमूई तौर 20 अरब रुपयनि जी सब्सिडी फराहम करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास में 193 किलोमीटर ड्रिगो नोकोट मिठी इस्लामकोट नगर पार्कर ऐं चेलार वाटर सप्लाई सिस्टम हवाले करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। मिठी में RO प्लांट्स जी सलाहियत वधाइण जूं हिदायतूं। सिंध काबीना बोर्ड मुतासिर ज़िलनि में स्टार वॉश प्रोग्राम जे मुआदे जी मसूदे जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पहिरें मरहले में खैरपुर जामशोरो बदीन ऐं नौशोरो फिरोज़ में 12 खां 15 लख माण्हुनि खे पाणी ऐं सफ़ाई जूं सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। काबीना पफटेक हेडक्वार्टर्स ऐं जदीद डेटा सेंटर क़ाइमु करण जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी, जिते आई हुब ऐं जदीद फील्ड कोआर्डिनेटर नेशनल रूम्स क़ाइमु कया वेंदा। मनसूबे लाइ 44 करोड़ 19 लख रुपयनि जी इज़ाफ़ी फंड्स जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सीनियर सूबाई वज़ीरनि जा इनाम महिमान ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त अटे जी फ्लोर मिल्स क़ीमत 112 रुपया/किलो मुक़ररु कई आहे, जंहिं ते सख़्ती सां अमल करायो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट बानी PTI खे शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। PTI बानी जे अस्पताल मुंतकिली लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो बि हुकुम। अस्पताल ॿाहिरां अमन अमान जी सूरतयाल ख़राब न थियणु घुरिजे। जस्टिस शाहिद वहीद चयो त मेडिकल रिपोर्ट मौजूद PTI बानी जे न नब्ज़ नॉर्मल आहे, न ही दिल वाइटल ऑर्गनाइज बि मुतासिर थियण शुरू थी विया आहिनि। इस्लामाबाद PTI बानी सां संदसि भेणनि जी मुलाक़ात बाबति अदालत खे आगाही ॾिनी त जेको कानून जी भञकड़ी कंदो त मुलाक़ात न थींदी। अदालत चयो त हू कानून जी भञकड़ी कनि, तव्हां बि कंदव, रियासत जो कमु कानून जी भञकड़ी करण न आहे। भेणनि सां मुलाक़ात उन्हनि ते थोरा न आहिनि, पर उहो संदन बुनियादी हक़ आहे। अदालत मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ज़िमेवारी घुरी। सलमान अकरम राजा रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ख़ातिरी कराए ॿुधड़ी 16 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत में नेशनल यूथ इम्प्लॉयमेंट पॉलिसीअ ते अमल दरामद बाबति इजलास। वज़ीर आज़म पारां नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण लाइ मरतूब ऐं सराहता क़दम यकीनी बणाइण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त हुनरमंद ऐं बासलाइत नौजवाननि खे बाइज़त रोज़गार फराहम करणु हुकूमत जी पहिरीं तरजीहनि में शामिल आहे। मुल्क जे समूरनि इलाइक़नि ख़ासि तौर ते बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घरू वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परॾेही तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ प्रोपेगेंडा आहे। भारत दहशतगर्दनि खे माली सहकार फराहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़े सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय दहशतगर्दीअ तां आलमी ध्यानु हटाए नथा सघनि। ऑपरेशन रद अलफितना टे तहत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं वधीक 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस ज़ियारत हरनाई ऐं सोराब में ॻुझी इतलाउ ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान 9 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾी मक़दार में हथियार बि हथु कया विया। DGISPR जे समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधनि ते 6,150 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि सां वेक। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती दहशतगर्दी ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजिस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा जवाब ॾिना। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इना मेमण चयो आहे त आइन में नवां सूबा ठाहिण जो तरीक़ेकार मौजूदु आहे ऐं को बि शख़्स या इदारो आइनी तरीक़ेकार खां ॿाहिरि नथो वञी सघे। अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा ऐवान में वेठा आहिनि, कंहिंखे बि परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत जे मौक़िफ़ में का बि तब्दीली न ईंदी। काबीना इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शर्जील इना मेमण चयो त राणा सनाउला अॼु सुबुह चयो आहे त कंहिं बि काबीना इजलास में अहिड़ी ॻाल्हि न हुई। خالد مقبول صدیقی ऐं मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर ख़तम थी चुका आहिनि ऐं ॼाणे वाणे इश्तिहाल अंगेज़ ॻाल्हियूं पिया कनि। PTI बानी जे सिहत लाइ दुआगू आहियां। बीमारीअ ते इंसानियत जो दामन न छॾणु घुरिजे। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्किया किरदार अदा करण लाइ तयारु आहे। तुर्किया जे सदर रजब तैयब उर्दगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप विच में टेलीफोनिक राब्तो थियो। रजब तैयब उर्दगान चयो आहे त ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्किया किरदार अदा करण लाइ तयारु आहे। अवाम मथां बिजली किराइण जी तयारी। बिजली 2.5 रुपया फी यूनिट महांगी करण लाइ नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी समूरे मुल्क में बिजली फी यूनिट 2.52 रुपया फी यूनिट महांगी करण जी नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल कराई। नेपरा मूजिबि CCPA जे दरख़्वास्त ते ॿुधणी 27 अगस्त ते थींदी। मंज़ूरी जी सूरत में वापेदारनि ते STP समेत 41 अरब रुपियनि जो इज़ाफ़े भार पवंदो। कराची में पेट्रोलियम लेवी ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मंशा लाइ जमायत इस्लामी जो 3 ॾींहं ते गवर्नर हाउस अॻियां धरणो जारी। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, पिशावर ऐं कोटिया में बि गवर्नर हाउस अॻियां 3 ॾींहनि खां धरणा लॻल। जमायत इस्लामी अॻवाननि जो चवणु आहे त पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते टैक्स वसूली बंदि कई वञे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गैर कानूनी भर्तियुनि जो केस अदालत धुरियुनि खां जवाब तलब करे वरितो। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अदनान अल करीम मेमण जी सरबराई में आईनी बेंच वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गुज़िरियल 5 सालनि दौरान गैर कानूनी भर्तियुनि ख़िलाफ़ केस जी ॿुधणी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी, लेबर खाते जे सेक्रेटरी ऐं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जे सेक्रेटरीअ खां 3 हफ़्तनि में जवाब तलब करे वरितो। कराची में कार सवार हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल ते फायरिंग पसंदि जो परणो कंदड़ नारी क़तल। गुलशन हदीद लिंक रोड ते कार सवार हथियारबंदनि मोटरसाइकिल ते फायरिंग करे कुझु वक़्तु अॻु पसंदि जो परणो कंदड़ नारी फातिमा खे क़तल करे छॾियो। फायरिंग जे नतीजे में औरत जे मुड़ुसु अकबर समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। शाह भरसां मुबैना तौर ज़हरीलो खीर पीअण सबब 2 मासूम भाइर फोत। ॻोठु करीमदाद सियाल में ज़हरीलो खीर पीअण सबब 6 वरियनि जो रिज़वान ऐं 8 वरियनि जो रिहान सियाल फोत थी विया। फोती ॿारनि जे वालिद जो चवणु आहे त राति देरि सां ॿारनि खे खीर पीतो, जंहिं बाद ॿारनि खे पेट में सूर पियो। ॿारनि जा लाश घर पहुचण ते रो जिड़ाड़ो। खानपुर महर मां अॻवा थियल वीराणी बिरादरी जूं 2 औरतूं बाज़ियाब कराइण जी दावा। खानपुर महर पुलिस पारां फरज़ाना ऐं जीवणी वीराणीअ खे बाज़ियाब करायो वियो। पुलिस जो चवणु आहे त बाज़ियाब करायल 2 औरतनि खे खानपुर महर थाणे ते आंदो आहे। काज़ी अहमद में चोरी जे 2 वारदातनि ऐं वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि जो थाणे अॻियां धरणो। शहरनि ऐं दुकानदारनि थाणे अॻियां एहतियाती मुज़ाहिरो करे पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। मुज़ाहिरनि चयो त पुलिस जी नाहेली सबबु शहर अंदरि चोरियुनि जो आज़ार वधी वियो आहे। चोरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे सामान वापसि करायो वञे।
1: Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
2: I'm with CNN.
1: Fake news. You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be
2: quiet.
1: You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
2: Mr. President, is there enough?
0: ऐं तूं गोड़ करण वारी कूड़ी रिपोर्टर आहीं, कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं। अमेरिकी सदर औरत साफ़ीअ ते ॾमरजी पियो। व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान CNN जे रिपोर्टर अमेरिकी सदर खां सवाल कयो त ट्रंप खेसि बेअदब चई नज़रअंदाज़ कयो। औरत साफ़ी ॾखण कोरिया बाबति सवाल कंदी रही। ट्रंप खेसि चयो, चुप कर, तूं अजायो गोड़ कंदी आहीं, तूं कूड़ी आहीं ऐं कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं। USS लिंकन ते खाधे पीते जी शयुनि जी खोट वारी CNN जी ख़बर कूड़ी हुई।
3: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकुम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
3: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
4: सुनवारा हुस्न पंहिंजो करे ज़ाहिर नहीं दो कर, करे ज़ाहिर नहीं दो कर। लिखण में थे न कोताही, लिखण में थे न कोताही, लिखण में थे न कोताही।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीउ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें अस पोलियो जो दींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्द में जो महफूज रह
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुप्रीम कोर्ट पानी पीटीआई के इलाज लाइ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुक्म ॾेई छॾियो। मेडिकल कोर्ट जोड़ण जो हुक्म अदालत पीटीआई पानी जो मेडिकल रिकॉर्ड गर्भातियुनि सां मुलाकातनि ऐं पुटनि सां कयल ॻाल्हि ॿोल जो रिकॉर्ड बि तलब करे वरितो। अदालत पीटीआई खे पानी जी सिहत ते सियासत करण खां बि रोके छॾियो। जस्टिस शाहिद वहीद चयो त मेडिकल रिपोर्ट मूजिबि पीटीआई पानी जी नब्ज नॉर्मल आहे ऐं नई दिल वाइटल ऑर्गन्स बि मुतासिर थियणु शुरू थी विया आहिनि। पीटीआई पानी खे ईंदड़ पुतणी ताईं अस्पताल मुंतकिल कयो वञे। अदालत मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ज़िमेवारी घुरी। सलमान अकरम राजा रिपोर्ट पब्लिक न करण जी ख़ातिरी कराई। ॿुधणी 16 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी।

पार्लियामानी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फज़ल तारिक चौधरी चयो आहे त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फ़ैसिले जो तड़िको बि इख़्तियार नाहे। हिन फ़ैसिले मुल्क में अदलिया जी आज़ादी साबित करे छॾी आहे। मुस्लिम लीग नून जी क़यादत खे बि अदालतनि मां रिलीफ मिलियो आहे। तंहिं करे अदालतनि जे फ़ैसलनि जो एतराम करणु घुरिजे। अदालतनि जे फ़ैसलनि ते सियासी रदि अमल ॾियण बदिरां क़ानूनी रस्तो इख़्तियार कयो वञे।

पीटीआई पारां पार्टी बानी के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण ऐं संदस तिबी मायने लाइ माहिर डॉक्टरनि खे बदल मेडिकल बोर्ड जोड़ण वारे हुकुम जी आजियां। पीटीआई तर्जुमान चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते मुकमल ऐं फौरी अमल दरामद जी उमीद आहे। कारकुन ऐं हामी अस्पताल ॿाहिरां गॾु न थियनि जीअं पीटीआई बानी जे इलाज में कंहिं बि क़िस्म जी रिकॉर्ड पैदा न थिए। पार्टी बानी खे इलाज बाबति अदालती हुकुम ते अमल दरामद खे अहम समझे थी ऐं संदसि तिबी सहूलियतुनि खे यकीनी पाइणु चाहे थी।

0: करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से।
1: देखें ये गाँव से जाना था वहाँ वो चला गया, मुझे लगता है कि मियां नवाज़ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश है।
2: पीटीए बनी के जॾहिं वञिणो हो होॾां वञी चुको आहे। मूंखे लॻे थो त हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ जी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थियण शुरू थी वई आहे। लोन लीग जे सेनेटर नासिर भट जो अदालती फ़ैसिले ते रद अमल। नासिर भट चयो त मौजूदा सूरतहाल खे सियासी हवाले सां बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे। हुकूमत ख़िलाफ़ कंहिंखे मुबैना साज़िश खे कामयाबु थियण न ॾिनो वञे। यूआई सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त पीटीआई बानी बाबति अदालती फ़ैसिलो जेको अॼु आयो उहो पहिरियां अचणु घुर्जे। हा, सूबनि जी हिमायत या मुखालफ़त में का बि लकीर न कढणु घुर्जे। कंहिं मामले ते लकीर कढण बदिरां बहस करे ॾिठो वञे त कहिड़ी शइ मुमकिन आहे ऐं कहिड़ी न। कंहिं बि मामले में लकीर कढण सां सदाई नुक़सान थियो आहे। हुकमरान हिते इतिहाद ऐं आज़ाद कश्मीर में हिक ॿिए मथां इल्ज़ाम लॻाए रहिया आहिनि। खीसो ख़ाली हुजे ऐं वसीला न हुजनि त अव्हां घर बि नथा हलाए सघो। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घर वज़ीर जूं दवाऊं बेबुनियाद करार। परे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ु अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिलु करण लाइ प्रोपेगेंडा आहे। भारत दहशतगर्दनि खे माली सहकार फ़राहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़ह सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय दहशतगर्दीअ तां आलमी ध्यानु हटाए नथा सघनि। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत में नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ते अमल दरामद बाबति इजलास। वज़ीर-ए-आज़म पारां नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण लाइ मज़बूत ऐं सराहता क़दम यकीनी बणाइण जी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त हुनरमंद ऐं बासलाहियत नौजवाननि खे बाइज़त रोज़गार फराहम करणु हुकूमत जी पहिरीं तरजीहनि में शामिल आहे। मुल्क जे समूरनि इलाइक़नि ख़ासतौर ते बलूचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। सिंध काबीना 25 एकड़ ताईं ज़मीन रखंदड़ कणिक ते आबाद करण लाइ DAP सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नवनि हारियुनि जी रजिस्ट्रेशन ऐं मौजूदा रजिस्ट्रेशन जी ॿीहर तस्दीक जी पिण मंज़ूरी। 13,13,000 रजिस्टर्ड हारियुनि खे मजमूई तौर 20 अरब रुपियनि जी सब्सिडी फराहम करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास में 196 किलोमीटर ढिगो नौकोट मिठी इस्लामकोट डंगर पार्कर ऐं चेलहार वाटर सप्लाई सिस्टम PHED हवाले करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। मिठी में RO प्लांट्स जी सलाहियत वधाइण जूं हिदायतूं। सिंध काबीना बोर्ड मुतासिर ज़िलनि में स्टार वॉश प्रोग्राम जे मुआदे जे मसवदे जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पहिरें मरहले में खैरपुर जामशोरो बदीन ऐं नौशोरो फिरोज में 12 खां 15 लख माण्हुनि खे पाणी ऐं सफ़ाई जूं सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। काबीना पफटेक हेडक्वार्टर्स ऐं जदीद डेटा सेंटर क़ाइम करण जी पिण मंज़ूरी ॾिनी। जिते AI हब ऐं जदीद फील्ड कोआर्डिनेशन रूम्स क़ाइम कया वेंदा। मनसूबे लाइ 44 करोड़ 19 लख रुपियनि जी इज़ाफ़ी फंड जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील नामे वटि ब्रीफिंग ॾींदे चयो त अटे जे फ्लोर मिल्स क़ीमत 112 रुपया फी किलो मुक़ररु कई आहे, जंहिं ते सख़्तीअ सां अमल करायो वेंदो। ऑपरेशन रतुल फितना टे तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं। वधीक 90 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस ज़ियारत हरनाई ऐं सोराब में ॻुझे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान 9 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾी मक़दार में हथियार बि हथु कया विया। DGISPR जी समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधनि ते 6,150 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि सां वेहक। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती दहशतगर्दी ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजेस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा दलीलनि सां जवाब ॾिना।

मिलियन सूबाई वसी शिटिलनामे वट चयो आहे त आइन में नवां सूबा ठाहिण जो तरीक़ेकार मौजूदु आहे ऐं को बि शख़्स या इदारो आइनी तरीक़ेकार खां ॿाहिरि नथो वञी सघे। आवाम जा चूंडियल नुमाइंदा ऐवान में वेठा आहिनि, कंहिंखे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत जे मौक़िफ़ में का बि तब्दीली न ईंदी। काबीना इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शचिन मेमण चयो त राणा सनावला अॼु सुबुह चयो आहे त कंहिं बि काबीना इजलास में अहिड़ी ॻाल्हि न थी हुई। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर ख़तम थी चुका आहिनि ऐं ॼाणे वाणे स्टाल अंगेज़ ॻाल्हियूं पिया कनि। पीटीआई वानी जी सिहत लाइ दुआगू आहियां। बीमारी ते इंसानियत जो दामन न चढ़णु घुरिजे।

दिवस पार करे निकरंदड़ जहाज ते हमलो हमले जो हिकु ॼणो मारिजी वियो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो इतला मिलियो आहे त जहाज खे हिकु अणॼातल नोइयत जी प्रोजेक्टाइल सां निशानो बणायो वियो आहे। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं जहाज जे इंजन रूम खे नुक़सान पहुतो। ईरान अमरीका चिकताण घटाइण में तुर्की खे तरदा करण लाइ तयारु। तुर्की जे सदर रजब तैयब अर्दोगान ऐं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप विच में टेलीफोनिक राब्तो थियो।

अवाम मथां बिजली किराइण जी तयारी। बिजली 28 रुपया फी यूनिट महांगी करण लाइ नेपरा में दफ़ा दाख़िल। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी समूरे मुल्क में बिजली फी यूनिट 2.52 रुपया फी यूनिट महांगी करण जी नेपरा में दफ़ा फी दाख़िल कराई छी। नेपरा मूजिब CCPA जी दरख़्वास्त ॿुधणी 27 अगस्त ते थींदी। मंज़ूरी जी सूरत में वाइपेदारनि ते GST समेत 41 अरब रुपयनि जो इज़ाफ़ी भार पवंदो। कराची में पेट्रोलियम लेवी ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मंत्रालय जवाद इस्लामी जो टे ॾींहं बि गवर्नर हाउस जे अॻियां धरणो जारी। लाहौर में वज़ीर अला हाउस, पिशावर ऐं क्वेटा में बि गवर्नर हाउस जे अॻियां 10 ॾींहनि खां धरणा लॻल। जवाद इस्लामी अॻवाणनि जो चवणु आहे त पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते टैक्स वसूली

सरकारी अस्पतालों पीपीएचआई हवाले करण खिलाफ़ आइनी दरख्वास्त जी सिंधाई कोर्ट सख्त बेंच में ॿुधणी। पीपीएचआई जे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऐं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसिस सिंध तरफ़ा

रांची में कार सवार हथियार बंदन की मोटरसाइकिल से फायरिंग पसंद पड़ो कदड़ नारी कतल कुछ नदी ते लिंक रोड से कार सवार हथियार बंदन मोटरसाइकिल से फायरिंग करे कुछ वक्त तक पसंद पड़ो कदड़ नारी फातिमा के कतल कर सको। फायरिंग के नतीजे में औरत के मुड़स अकबर समेत पंद्रह जणा जख्मी अस्पताल मुंतकिल।

0: quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find him disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
1: I'm with CNN.
0: Fake news.
1: You're fake news.
0: You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
2: ऐं तो गोड़ करण वारी कूड़ी रिपोर्टर आहीं कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं। अमरीक सदर औरत साफ़ी ते डमर चिपियो। व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान CNN जी रिपोर्टर अमरीकी सदर खां सवाल कयो त ट्रंप खेसि बेअदब चई नज़रअंदाज़ कयो। औरत साफ़ी ॾखण कोरिया बाबति सवाल कंदी रही। ट्रंप खेसि चयो, चुप कर, तूं अजायो गोड़ कंदी आहीं, तूं कूड़ी आहीं ऐं कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं। USS लिंकन ते खाधे पीते जी शयुनि जी कोट वारी CNN जी ख़बर कूड़ी हुई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: सिंध की हो तो आवाज़ भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीउ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीउ बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा आफादी

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो अस बार बार पे बार पोलियो का कतरा छो प्यार जो असार पैर पोलियो
2: अजरक किर।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उनमें का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान।

0: तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

0: वेरी किसी से रहे हाथ मांग तो हाथ मांग रहे हैं इमरान खान के लिए हाथ मांग रहे हैं उनका हक था उनके लीगल उनका लीगल लॉफुल राइट है कि उनका इलाज करवाया जाता तो गवर्नमेंट भी लॉ तोड़ गया आगे से इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि 80-85% लोग उनके पीछे खड़े हैं
1: सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ से बानी के इंडियन अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुक्म ॾेई छॾियो अदालत पीटीआई बानी जे इलाज लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुक्म ॾींदे हेल्थ ताईं थियल इलाज जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरितो मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन जनरल सर्जन इंटरनल मेडिसन आई स्पेशलिस्ट ऐं कार्डियोलॉजिस्ट शामिल करण जी हिदायत डॉक्टर फैसल सुल्तान ऐं उस्मा खान खे इलाज में शरीक रहण जी इजाज़त पीटीआई बानी सां घरभातियुनि जी हफ़्ते में हिकु भेरो मुलाक़ात ऐं पुटनि सां ॿ भेरो टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल करण जो हुकुम सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति ॿुधणीअ जो लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो अदालत चयो आहे त क़ैदी खे जेल में हुजण बावजूदि इंसानी वर्ताउ ऐं ज़रूरी तिबी सहूलियतुनि जो हक़ हासिल आहे पीटीआई बानी जी सिहत बाबति ॼाण सियासी फ़ाइदे लाइ इस्तेमालु न करे सघबी बानी जे इलाज दौरान शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल में को बि अवामी भीड़ न थींदो हुकुम जी भजकड़ी ते ॾिनल सहूलियतूं फौरी तौरु वापसि वठी सघजनि थियूं हुकूमत जो पीटीआई बानी खे जेल खां निजी अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते जीअं जो तीअं अमल करण जो ऐलान वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फ़ैसिले जे उबतर को बि इख़्तियार नाहे हिन फ़ैसिले मुल्क में अदलिया जी आज़ादी साबित करे छॾी आहे अदालतनि जे फ़ैसिलनि ते सियासी रद अमल ॾियण बदिरां कानूनी रस्तो पीटीआई पारां पार्टी बानी खे शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण ऐं संदसि तिबी मुआइने लाइ ॿाहिरि डॉक्टर ते ॿधल मेडिकल बोर्ड जोड़ण वारे हुकुम जी आज़ी आहे पीटीआई तर्जुमान चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते मुकमल ऐं फौरी अमल दरामद जी उमेद आहे कारकुन ऐं हामी अस्पताल ॿाहिरां गॾु न थियनि जीअं पीटीआई बानी जे इलाज में कंहिं बि क़िस्म जी रुकावट पैदा न थिए पार्टी बानी जे इलाज बाबति अदालती हुकुम ते अमल दरामद खे अहम सम्झे थी ऐं संदसि तिबी सहूलियतुनि खे यकीनी पाइणु चाहे थी
2: क्या है नून लीग का आज
3: नेशनल
2: हॉस्पिटल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से
3: देखें ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुकुर के खिलाफ फिर साजिश है
1: पीटीआई बानी खे जेॾां वञिणो हो होॾां वञी चुको आहे मूंखे लॻे थो त हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ शरीफ जी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थियणु शुरू थी वई आहे नून लीग जे सेनेटर नासिर भट्ट जो अदालती फ़ैसिले ते रदि अमल नासिर भट्ट चयो त मौजूदा सूरतहाल खे सियासी हवाले सां बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे हुकूमत ख़िलाफ़ कंहिं बि मुबैना साज़िश खे कामयाबु थियणु न ॾिनो वञे जे यू आई सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त पीटीआई बानी बाबति अदालती फ़ैसिलो जेको अॼु आयो इहो पहिरियां अचणु घुरिजे हा सूबनि जी हिमायत या मुखालफ़त में का बि लकीर न कढणु घुरिजे कंहिं मामले ते लकीर कढण बदिरां बहस करे ॾिठो वञे त कहिड़ी शइ मुमकिन आहे ऐं कहिड़ी न कंहिं बि मामले में लकीर कढण सां सदाई नुक़सानु थियो आहे हुकमरान हिते इतिहाद ऐं आज़ादु कश्मीर में हिक ॿिए मथां इल्ज़ाम लॻाए रहिया आहिनि कीसो ख़ाली हुजे ऐं वसीला न हुजनि तव्हां घर बि नथा हलाए सघो

0: पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय गैरवज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परडे तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान जो इल्ज़ाम सिर्फ़ु अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ प्रोपेगेंडा आहे। भारत शिरकतनि खे माली सहकार फ़राहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़ह सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय दहशतगर्दीअ तां आलमी ध्यानु हटाए नथा सघनि। सिंध काबीना 25 एकड़ ताईं ज़मीन विकिणंदड़ कणक जे आबादगारनि लाइ DAP सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नवनि हारियुनि जी रजिस्ट्रेशन ऐं मौजूदा रजिस्ट्रेशन जी ॿीहर तस्दीक जी पिणु मंज़ूरी। 13,13,000 रजिस्टर्ड हारियुनि खे मजमूई तौर 20 अरब रुपियनि जी सब्सिडी फराहम करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास में 196 किलोमीटर ढिगो नौकोट मिठी इस्लाम कोट नगर पार्कर ऐं चिलहार वाटर सप्लाई सिस्टम PHED हवाले करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। मिठी में आरो प्लांट जी सलाहियत वधाइण जूं हिदायतूं। सिंध काबीना बोर्ड मुतासिर ज़िलनि में स्टार वॉश प्रोग्राम जे माहिदे जे मुसवदे जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पहिरें मरहले में खैरपुर जामशोरो बदीन ऐं नौशोरो फिरोज में 12 खां 15 लख माण्हुनि खे पाणी ऐं सफ़ाई जूं सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। काबीना पफटेक हेडक्वार्टर्स ऐं जदीद डेटा सेंटर क़ाइमु करण जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी, जिते AI हब ऐं जदीद फील्ड कोआर्डिनेशन रूम्स क़ाइमु कया वेंदा। मनसूबे लाइ 44 करोड़ 19 लख रुपियनि जे इज़ाफ़ी फंड्स जी मंज़ूरी ॾिनी वई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे। सुबुह

0: जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो, छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना नज़द अची मस्जिद दर्श रोड मोरो। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0301-3646-459। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
1: क्या आप महंगे इलाज और ऑपरेशन के बगैर शिफा चाहते हैं? तो मिलिए इस्लामाबाद के मशहूर और मारूफ खानदानी होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर फराज कामरान, TA चेयरमैन, MDH, RHMP, 25

0: आँख के ऊपर एक नस होती है जो यहाँ ऊपर से गुजरने के बाद हमारी गर्दन तक जा रही होती है, सर के ऊपर से गुजर के। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज पैदा हो जाए तो उसकी वजह से हमारे आधे सर में दर्द होता है। अमूमन जो दर्द शकीका है वो इस वजह से होता है। इसके अलावा भी और कई वजूहात हो सकती हैं। जो कंडीशन ये बता रहे हैं उसमें तो मेरा गुमान है कि मुमकिन है कि ये गर्म होते होंगे और अचानक से या तो इनको ठंडी हवा लगती है और या ये ठंडा पानी पीते हैं। यानी अगर आपको पसीना आया हुआ हो और आप शदीद गर्म है आपका जिस्म और आप अचानक से ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हो वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे इसी वजह से इनको ये दर्द हो रहा है, क्योंकि जब भी हम गर्म गर्म जिस्म पे या तो ठंडा पानी डालें या हम उस वक्त ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल है वो अचानक से जमना शुरू कर देता है, अचानक से।
1: ठीक है।
0: और वो गर्मी की सूरत हाल में यानी जिस्म की गर्मी की सूरत हाल में पिघली हुई हालत में होता है। तो खुद सोचें कि अगर वो किसी ख़तरनाक जगह पर जम जाए और चिपक जाए तो वो कितना नुकसान देगा। तो जिस जगह पर एक दफ़ा ब्लॉकेज पैदा हो जाए उस जगह

0: पे बार बार ब्लॉकेज का मसला होता है, तो इसी वजह से इनको ये 2 साल हो गए हैं और इनको जो है ये दर्द शकी का पीछा नहीं छोड़ रहा, कभी एक साइड पे और कभी दूसरी साइड पे। लेकिन परेशान ना हो, होम्योपैथी में दर्द शकी का, माइग्रेन का बेहतरीन इलाज है। अगर किसी को राइट साइड का है तो उसकी अलग मेडिसिन होती है, अगर किसी को लेफ्ट साइड का है तो उसकी अलग मेडिसिन होती है, और अगर किसी को अल्टरनेट होता है तो उसकी अलग मेडिसिन है। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, अगर ये प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे इंशाल्लाह ताला इनका ये जो अधमत्थे का सूर है ये ठीक हो जाएगा।
1: जी अदा बिल्कुल डॉक्टर साहब तहांखे बुधायो आहे ताई अदेशो यो आहे त जे वक्त तहांखे पघर निकरे थो उन वक्त या त तव्हां थधे पाणी जो इस्तेमालु कयो पिया या तव्हांजे जिस्म खे थधी हवा लॻे थी त पोइ हिकदमि तव्हांखे मथे में सूर पइजी वञे थो। उन जे लाइ इहो आहे त इन जो इलाज होम्योपैथिक दवा जे वसीले आहे। तव्हां हलिया अचो डॉक्टर साहब सुबुह जो 9 वॻे खां वठी शाम जो 5 वॻे ताईं, हिन जुमे ताईं डॉक्टर साहब पंहिंजे क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा। उन खां पोइ डॉक्टर साहब हलिया वेंदा इस्लामाबाद ऐं 10 ॾींहनि खां पोइ डॉक्टर साहब वापसि ईंदा ऐं उन खां अॻु में अगरि तव्हां इलाज कराइणु चाहियो था त पोइ हलिया अचो मोरो। कॉलर जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: जी अदा साईं, रेडियो जो आवाज़ घटि कजो। गुलाम नबी रेडियो जो आवाज़ घटि कयो। जी अदा, हाणे ॿुधायो छा था पुछणु चाहियो, किथां था ॻाल्हायो था? ठीकु आहे दा, छा था पुछणु चाहियो डॉक्टर साहब खां?
2: लाल मुहारी जो आहे, मथे में करे हिन पासे सूर, करे हिन पासे सूर, ऐं ॿियो ख़ुश्की अथसि ॾाढी।
1: ठीकु आहे, उनखे बि अधु मथे जो सूर थो थिए।
2: हा, हिन जे लाइ ख़ुश्की ॾाढी, ऐं मथे खे बि करे करे चकर।
1: अॻु में बि तव्हां हिन बारे में कॉल कई हुई न डॉक्टर साहब ॾे?
2: हा, उहो छोकिरो मुंहिंजो नातर हुनजे,
1: उनजो इलाज करायो।
2: हा, उनजो करायो, उनजो ईंदासीं क्लिनिक ते।
1: ठीकु आहे, मतिलबु उनजो बि इलाज अञा न करायो आहे ऐं हिन खे ख़ुश्की बि आहे ऐं चकर बि अचनि था। जी अदा, चकर बि अचनि था? भाई साहब चला गया
0: जी।
1: अच्छा, मेरे ख्याल से इसकी जो वाइफ है उसे एक तो ये माइग्रेन है और खुश्की, शायद जबान की खुश्की हो या बॉडी की हो, कोई ऐसा मसला है, और चक्कर भी आते हैं ना।
0: हाँ, देखिए पेचीदा अमराज होते हैं बाज़ औक़ात, चक्कर जो है ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आते हैं, जिसमें लो बीपी की शिकायत की वजह से भी हो सकता है और अमूमन कान में ख़राबी की वजह से भी ये मसला होता है। कान की ख़राबी ऐसी नहीं होती कि वो वाज़े तौर पर बाहर से नज़र आए या कान में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो। ये कान के अंदर जो हमारे बैलेंस को करने, बैलेंस करने वाली जो एक डिवाइस लगी हुई है, जो 3 हड्डियाँ होती हैं, उनके अंदर हाइपर सेंसिटिव की वजह से मरीज़ को चक्कर महसूस होते हैं। वो थोड़ा सा हरकत करता है और उसका ये पानी कुछ ज़्यादा हरकत करता है, जिसकी वजह से मरीज़ को चक्कर की कैफियत महसूस होती है। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म के चक्करों का इलाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के होम्योपैथी में इस चीज़ का बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो बहुत से लोगों को शिफा मिली है। इनसे भी मैं ये कहूँगा कि अपने बेगम को लेकर क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएं, उनके मुकम्मल केस हिस्ट्री लेने के बाद उनकी तकलीफ़ के मुताबिक उनको एक नुस्खा बना कर दिया जाएगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला उनकी ये जो खुश्की का मामला है, जो उनके चक्कर का मामला है, और साथ में माइग्रेन वो कह रहे हैं ना कि सर में दर्द भी होता है, आधे सर का दर्द, ये भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा।
1: जी अदा बिल्कुल, तव्हां नंढड़े खे भी वठी अचो जंहिंजे लाइ कॉल कई हुई ऐं पंहिंजी घरवारी खे भी वठी अचो ऐं पंधु परे कोन्हे को, ने को।

0: मरीज ठीक हो जाता है तो फिर उसका इलाज भी बंद कर दिया जाता है।
1: जी अदा इन ना है तो चेल जो सूर तहांजी घरवारी के गुड़दन में किचरे जे करे थिनो हो जे ब्या भी खोड़ सारा सबब थिना है जंजे करे चेल जो सूर थिनो है उने जे लाए तवा जुमे खाग में डॉक्टर साहब वट वठिए जो पानी घरवारी के डॉक्टर साहब उने जो मोइनो कंदो चेकअप कंदो इलाज कंदो इंशाल्लाह ताला उने जी तकलीफ हमेशा हमेशा जे लाए खत्म थी वेंदी। तो प्रोग्राम से जी गाल डॉक्टर फराज कामरान सा जो वक्त पहुंची है पानी पुजानी ते वणन का पहिरा तवा के सभी के जो लिसनर्स हैं या जो डॉक्टर साहब जहाँ मरीज इन वक्त बुझी रहा तो उन्होंने बुधाई हल्दे तो डॉक्टर साहब इन जुमे का जो इंदड़ जुमो है इन जुमे का वही रहा है इस्लामाबाद पर जुमे के ढी क्लिनिक खुलल रही छंछर के ढी का क्लिनिक बंद रही अठन का दह ढी उन्हें लाइ अगर को मरीज फॉलोअप के लिए अचान चाहे तो वो अची सके तो डॉक्टर साहब पाँच क्लिनिक से जुमे तई मौजूद होंद इंशाल्लाह ताला हयाती रही तो वरी साॻे ई टाइम ते सुभाणे तव्हां सां लाइव शो जे दौरान गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलह वाही अलह निगहबान।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: लगे नहीं किसी से रहे, हाथ मांगो, हाथ मांग रहे हैं जान मान के लिए, हाथ मांग रहे हैं, उनका हक था, उनके लीगल, उनका लीगल प्रॉपर राइट है कि उनका इलाज करवाया जाता। तो गवर्नमेंट भी लॉ तोड़ रही है आगे से। इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि 80-85% लोग उनके पीछे खड़े हैं।
1: सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ चेबानी के बिंडियन अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म ॾेई छॾियो। अदालत पीटीआई बानी के इलाज लाए मेडिकल बोर्ड जोड़ने जो हुक्म डींदे हेल ताईं थियल इलाज जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसन, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल करने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उस्मा खान के भी इलाज में शरीक रहने की इजाजत। पीटीआई बानी से गर्भातियन के हफ्ते में एक भेरो मुलाकात और पुटन से ब फेरा टेलीफोनिक गाल बोल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करने बाबत बुधनी जो लिखित में हुक्म जारी कर छो। अदालत है कैदी के जेल में होजन बावजूद इंसानी वर्ताव ए जरूरी तिबी सहूलतों को हक हासिल है। पीटीआई बानी की सेहत बाबत जान सियासी फायदे लाए इस्तेमाल न कर सकती। बानी के इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को भी अवामी बेड न थी। हुक्म की पचगड़ी से दिनल सहूलतू फौरी तौर वापस वी सकजन थ। वफाकी हुकूमत पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बाबत हुक्म जो नए सिर जायजो वठण लाए अदालत से राबतो करण जो ऐलान कर छो। कानून वारे वजीर आजम नजीर तारड़ चाहिए है पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बाबत हुक्म जो जायजो वरतो वो। अदालती हुक्म जो नए सिर जायजो वठण लाए अदालत से राबतो वो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चाहिए है पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण बाबत वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चाहिए है पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण बाबत सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म से जी जो तीं अमल किया। वजीर आजम वट अदालत के फैसले की उबतड़ को भी इख्तियार ना है। इन फैसले मुल्क में अदलिया की आजादी साबित कर छी है। अदालत के फैसलों से सियासी रद्द अमल दियण बदरा कानूनी रस्त इख्तियार किया वे। राणा सनाउल्ला चाहिए है सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो मेरिट से बदल है। पीटीआई सही फोरम से अचण में पा देर कई सीधो रस्त इो ही है।

0: डोरी न्यासी जी मुलाकात सिहत ऐं ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। डोरी न्यासी जी पीटीआई बानी खे सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम खां आगाही। ज़रियनि मुजिबि पीटीआई बानी ऐं डोरी न्यासी जी मुलाकात 30 मिंटनि ताईं जारी रही। डोरी न्यासी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल खां सवाइ रवानी। पीटीआई पारां पार्टी बानी खे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण ऐं संदसि तिबी मायने लाइ माहिर डॉक्टरनि ते ॿधल मेडिकल बोर्ड जोड़ण वारे हुकुम जी आजी आहे। पीटीआई तर्जुमान चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते मुकमल ऐं फौरी अमल दरामद जी उमीद आहे। कारकुन ऐं हामी अस्पताल ॿाहिरां गॾु न थियनि जीअं पीटीआई बानी जे इलाज में कंहिं बि क़िस्म जी रुकावट पैदा न थिए। पार्टी बानी जे इलाज बाबति अदालती हुकुम ते अमल दरामद खे अहम समुझे थी ऐं संदसि तिबी सहूलियतुनि खे यकीनी पाइणु चाहे थी।
1: पहला टेक क्या है नून लीग का? आज मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से।
2: देखें, ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुकर के खिलाफ फिर साजिश है।
0: पीटीआई बानी खे जेॾां वञणो हो होॾां वञी चुको आहे। मूंखे लॻे थो त हिकु भेरो ॿीहर नवाज शरीफ जी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थियणु शुरू थी वई आहे। नून लीग जे सेनेटर नासिर भट्ट जो अदालती फ़ैसिले ते रदि अमल। नासिर भट्ट चयो त मौजूदा सूरत हाल खे सियासी हवाले सां बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे। हुकूमत ख़िलाफ़ कंहिं बि मुबैना साज़िश खे कामयाबु थियणु न ॾिनो आहे। जेयूआई सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त पीटीआई बानी बाबति अदालती फ़ैसिलो जेको अॼायो इहो पहिरियां अचणु घुरिजे। हा, सूबनि जी हिमायत या मुखालफ़त में का बि लकीर न करणु घुरिजे। कंहिं मामले ते लकीर कढण बदिरां बहस करे ॾिठो वञे त कहिड़ी शइ मुमकिन आहे ऐं कहिड़ी न। कंहिं बि मामले में लकीर कढण सां सदाई नुक़सान थियो आहे। हुकमरान हिते इतिहाद ऐं आज़ाद कश्मीर में हिक ॿिए मथां इल्ज़ाम लॻाए रहिया आहिनि। खीसो ख़ाली हुजे ऐं वसीला न हुजनि त अव्हां घर बि नथा हलाए सघो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गूगल जी पाकिस्तान ऑफिस जो इफ़्तिताह करे छॾियो। गूगल जे नायब सदर विल्सन ऐं संदसि टीम जी पाकिस्तान अचण ते आजी आहे। मुलाकात दौरान टेक्नोलॉजी खे हथी ॾियण समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। शहबाज शरीफ चयो आहे त गूगल दुनिया में मशहूरु टेक्नोलॉजी कंपनी आहे। पाकिस्तान गूगल लाइ हिकु अहम ऐं ख़ूबसूरत नए सफ़र जी शुरूआत आहे। हिते तमामु घणा मौक़ा आहिनि। गूगल जे नायब सदर जो चवणु आहे त गूगल पाकिस्तान लाइ डिघी उते वारी भाईवारी जो ख़्वाहिशमंद आहे। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घर वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परॾेही तर्जुमान जो चवणु आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान जो इल्ज़ाम सिर्फ़ु अंदरूनी सियासी मक़सदु हासिल करण लाइ प्रोपेगेंडा आहे। भारत दहशतगर्दनि खे माली सहकार फ़राहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़े सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय दहशतगर्दीअ तां आलमी ध्यानु हटाए नथा सघनि। सिंध कापीना 25 एकड़ ताईं ज़मीन रखंदड़ कणक जे आबादगारनि लाइ DAP सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नवनि हारियुनि जी रजिस्ट्रेशन ऐं मौजूदा रजिस्ट्रेशन जी ॿीहर तस्दीक जी पिणु मंज़ूरी। 6,13,000 रजिस्टर्ड हारियुनि खे मजमूई तौरु 20 अरब रुपियनि जी सब्सिडी फ़राहम करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास में 193 किलोमीटर डिघो नौकोट मिठी इस्लाम कोट नंगर पार्कर ऐं चिलहार वाटर सप्लाई सिस्टम PHED हवाले करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। मिटी में आरो प्लांट जी सलाहियत वधाइण जूं हिदायतूं सिंध काबीना बोर्ड मुतासिर ज़िलनि में स्टार वॉश प्रोग्राम जे माहिदे जी मुसविदे जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। मरहले में ख़ैरपुर जामशोरो बदीन ऐं नौशोरो फिरोज में 12 खां 15 लख माण्हुनि खे पाणी ऐं सफ़ाई जूं सहूलियतूं फ़राहम कयूं वेंदियूं। काबीना पफटेक हेडक्वार्टर्स ऐं जदीद डेटा सेंटर क़ाइमु करण जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी, जिते AI हब ऐं जदीद फील्ड कोआर्डिनेशन रूम्स क़ाइमु कया वेंदा। मनसूबे लाइ 44 करोड़ 19 लख रुपियनि जे इज़ाफ़ी फंड जी मंज़ूरी ॾिनी वई। سینئر صوبائی وزیر شاہ جی نام احمد بریفنگ ڈینے چاہتا ہے اٹے جی فلور مل قیمت 112 روپیہ فی کلو مقرر کیا ہے جن سختی سے عمل کرایا ویسے

कर्ज ऐं खसारे में हलंदड़ मुल्क अंदरि 65 सूबनि जी ॻाल्हि कई पई वञे, सिंध खे केर बि टोड़े नथो सघे। मुल्क जे अदीबनि, दानिशवरनि, लेखकनि ऐं कानूनदाननि नवनि सूबनि जी ॻाल्हियुनि खे सियासी नारो करार ॾेई छॾियो। कराची में दानिशवर फोरम पारां सिंध जे इम्कानी विरागीअ ख़िलाफ़ मुल्कगीर कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे नसीर मेमर, ताहिर हुसैन, नसीम ज़ाहिर ऐं शाज़िया निज़ामाणी चयो त हू समुझनि था त कराची खां ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ताईं सिंध आहे। सिस्टम ख़राब थियण जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जे करे ई सिस्टम ख़राब थियो। माशी तबाही में सूबनि जो को बि हथ न आहे। सिंध खे ज़मीनूं ऐं पाणी ॾियण खां इनकार करण जी सज़ा ॾिनी पई वञे। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील लामेमण चयो आहे त आइन में नवां सूबा ठाहिण जो तरीक़ेकार मौजूदु आहे ऐं को बि शख़्स या इदारो आइनी तरीक़ेकार खां ॿाहिरि नथो वञी सघे। अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा ऐवान में वेठा आहिनि, कंहिंखे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत जे मौक़िफ़ में का बि तब्दीली न ईंदी। काबीना इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमण चयो त राणा सनावला अॼु सुबुह चयो आहे त कंहिं बि काबीना इजलास में अहिड़ी ॻाल्हि न थी हुई। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर ख़तम थी चुका आहिनि ऐं ॼाणे वाणे इश्ताल अंगेस ॻाल्हियूं पिया कनि। पीटीआई बानी जी सिहत लाइ दुआगू आहियां। बीमारी ते इंसानियत जो दामन न चढ़णु घुरिजे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे

0: जुल्म ही हो रहा है। इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खा मेरी कसम।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलनी की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछा लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर रुकूंगी, सामने तमाशा बन गई मामा।

0: एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GAFM 9।
3: गवर्नमेंट भी लॉ तोड़ गया आगे से। इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि 80-85% लोग उनके पीछे खड़े हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट तरीकन साहब से बानी के भिंडियन अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुक्म दे छोड़ो। अदालत पीटीआई बानी के इलाज लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ जो हुक्म दीदे हेल्थ ताई थियल इलाज जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन, आई स्पेशलिस्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट शामिल करण की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान ए उस्मा खान के भी इलाज में शरीक रहने की इजाजत। पीटीआई बानी सा गर्भातियन की हफ्ते में एक भेरो मुलाकात ए पुटन सा ब भेरो टेलीफोनिक गाल बोल करण जो हुक्म। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण बाबत बुधनी जो लिखित में हुक्म जारी कर छोड़ो। अदालत चाहिए तो कैदी के जेल में होजन बावजूद इंसानी वर्ताव ए जरूरी तिबी सहूलत जो हक हासिल है। पीटीआई बानी की सेहत बाबत जान सियासी फायदे लाए इस्तेमाल न कर सकबी। बानी के इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को भी अवामी मेड न थी हुक्म की भजगड़ी से डल सहूलतू फौरी तौर वापस वी सकजन थी।

0: पहला टेक क्या है नून लीग का आज मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से?
1: देखे ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया, मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुकुर के खिलाफ फिर साजिश है।
2: पीटीआई बानी के जॾहिं वञणो हो ओॾां वञी चुको आहे। मूंखे लॻे थो त हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ शरीफ जे हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थियणु शुरू थी वई आहे। नून लीग जे सेनेटर नासिर भट्ट जो अदालती फ़ैसिले ते रद अमल। नासिर भट्ट चयो त मौजूदा सूरतहाल खे सियासी हवाले सां बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे। हुकूमत ख़िलाफ़ कंहिं बि मुबैना साज़िश खे कामयाबु थियणु न ॾिनो वञे।

सरफराब मौलाना फजल रहमान जो है तो पी टी आई बाबत अदालती फैसलो जो अज आयो वो पैर अचान घुर्जे हा सूबन की हिमायत या मुखालफत में का भी लकीर न कटन घुर्जे कें मामले से लकीर कटन बदर बहस कर दिठो वे तो कड़ी शे मुमकिन है न कें भी मामले में लकीर कटन से सदा ही नुकसान थो है। हुक्मरान इतने इतिहाद आजाद कश्मीर में एक बे मथा इल्जाम लगा रहा है खीसो खाली हुए वसीला न होजन तो अव घर भी नथा हल सको।

0: जिन खां बिना 25 एकड़ ताईं ज़मीन रखंदड़ कणक जे आबाद करण लाइ DAP सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नवनि नारियुनि जी रजिस्ट्रेशन ऐं मौजूदा रजिस्ट्रेशन जी ॿीहर तस्दीक जी पिण मंज़ूरी। 6,13,000 रजिस्टर्ड हारियुनि खे मजमूई तौर 20 अरब रुपियनि जी सब्सिडी फराहम करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास में 193 किलोमीटर ट्रिको नोकोट मिठी इस्लाम कोट नंगर पार्कर ऐं चेलहार वाटर सप्लाई सिस्टम PHED हवाले करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। मिठी में आरो प्लांट्स जी सलाहियत वधाइण जूं हिदायतूं। सिंध काबीना बोर्ड मुतासिर ज़िलनि में स्टार वॉश प्रोग्राम जे मुआदे जे मसवदे जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पहिरें मरहले में खैरपुर जामशोरो मदीन ऐं नौशेरो फिरोज में 12 खां 15 लख माण्हुनि खे पाणी ऐं सफ़ाई जूं सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। काबीना पफटेक हेडक्वार्टर्स ऐं जदीद डेटा सेंटर क़ाइम करण जी पिण मंज़ूरी ॾिनी, जिते AI हब ऐं जदीद फील्ड कोआर्डिनेशन रूम्स क़ाइम कया वेंदा। मनसूबे लाइ 44,19,00,000 रुपियनि जी इज़ाफ़ी फंड्स जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम महमंड ब्रीफिंग ॾींदे चयो त अटे जी फ्लोर मिल्स क़ीमत 112 रुपया फी किलो मुक़ररु कई आहे, जंहिं ते सख़्ती सां अमल करायो वेंदो। कर्ज़ ऐं खसारे में लहंदड़ मुल्क अंदरि 35 सूबनि जी ॻाल्हि कई पई वञे। सिंध खे केर बि टोड़े नथो सघे। मुल्क जे अदीबनि दानिशवरनि लेखकनि ऐं कानूनदाननि 9 सूबनि जी ॻाल्हियुनि खे सियासी नारो करार ॾेई छॾियो। कराची में दानिशवर फोरम पारां सिंध जे इम्कानी विरागे ख़िलाफ़ मुल्क गेर कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे नसीर मेमण, ताहिर हुसैन, नसीम ज़ाहिर ऐं शाज़िया निज़ामाणी चयो त हू सम्झनि था त कराची खां ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ताईं सिंध आहे। सिस्टम ख़राब थियण जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जे करे ई सिस्टम ख़राब थियो। माशी तबाही में सूबनि जो को बि हथ न आहे। सिंध खे ज़मीनूं ऐं पाणी ॾियण खां इनकार करण जी सज़ा ॾिनी पई वञे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम महमंड चयो आहे त आइन में नवां सूबा ठाहिण जो तरीक़ेकार मौजूदु आहे ऐं को बि शख़्स या इदारो आइनी तरीक़ेकार खां ॿाहिरि नथो वञी सघे। आवाम जा चूंडियल नुमाइंदा ऐवान में वेठा आहिनि, कंहिंखे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत जे मौक़िफ़ में का बि तब्दीली न ईंदी। काबीना इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शर्जील महमंड चयो त राणा सना वाला अॼु सुबुह चयो आहे त कंहिं बि काबीना इजलास में अहिड़ी ॻाल्हि न थी हुई। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौरु ख़तमु थी चुका आहिनि ऐं ॼाणे वारे इश्ताल अंगेज़ ॻाल्हियूं पिया कनि। PTI पाणी जी सिहत लाइ दुआगो आहियां। बीमारी ते इंसानी सामान न छॾणु घुरिजे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GAFM 90.8।